सुप्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। आज है वीरवार, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की सप्तम तिथि, तदनुसार 28 मई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है। इस मंगलमय बेला में आप सभी का स्वागत है।

0: 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स

हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could score only 196 runs in 19.2 overs. Weber Suryavanshi has been adjudged as the player of the match. Eid al-Zuha, also known as the Festival of Sacrifices, being celebrated across the country. The holy occasion honors Prophet Ibrahim's absolute faith and is marked by the ritual of Qurbani. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion of Eid al-Zuha. In her message, the president said that festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला सुन रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। हिमांजलि कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम, और अगर दिन की शुरुआत सही से अच्छे से हो जाए तो पूरा दिन ऊर्जा से लबालब रहता है। और ईश वंदन से करते हैं शुरुआत, तो आइए सुनते हैं गणेश स्तुति।

विघ्न हर्ता श्री गणेश हमारे सारे कष्टों का निवारण करें और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, भय संकट से हम दूर रहें, ऐसी कामना करते हुए आइए अब अपना ध्यान लगाते हैं शिव शंकर जी के चरणों में।

आशुतोष दयालु भोले शंकर सब पर अपनी कृपा बरसा कर सबका कल्याण कर सबका बेड़ा पार करते हैं। हिमांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से और माँ अम्बे जी की आरती बिना तो कार्यक्रम पूरा हो नहीं सकता। तो आइए चलते हैं, इस आरती को सुनते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं माँ के चरणों में।

राम नाम का जाप ही इस संसार रूपी भवसागर को पार करने में हमारे लिए सहायक रहता है। सृष्टि के कण कण में श्री राम जी समाए हैं तो राम नाम का सुमिरन करना, जाप करना कल्याणकारी रहता ही है। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये भजन।

इसी के साथ हिमांजलि कार्यक्रम में आज बस इतना ही। जुड़े हैं आप आकाशवाणी FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

0: अभी आपने सुना देशगान।
1: सूचना मनोरंजन शिक्षा
0: जुड़े हैं आप आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में ये समय होने वाला है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।

0: 6:57 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कल शिमला जिला के नेरवा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विद्यार्थियों के सवालों के जवाब में कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेंगी और उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में इन घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में हुआ है। प्रदेश में आज पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान अब से कुछ देर बाद 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। प्रदेश में हुए पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के नतीजे घोषित होने के बाद अब प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करने में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कल मंडी में दावा किया कि पंचायत चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है, जबकि कांग्रेस की करारी हार हुई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है। विनय कुमार ने यह भी कहा कि प्रदेश के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को विधानसभा या लोकसभा की तरह सत्ता का सेमीफाइनल बताना पूरी तरह गलत है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जनसमर्थन और उम्मीदवारों की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्वगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। राज्य जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार स्वगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: 87.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्स पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित

0: 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में

0: राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। अब आप सुनेंगे चिंतन।

प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे। धनार्थियों को वे सहस्र स्वर्ण मुद्राओं से कम दान नहीं देते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी के दिन उपवास करते थे। गंगा की बालुका, वर्षा की धारा और आकाश के तारे कदाचित गिने जा सकते हैं, पर इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं हो सकती। इन पुण्यों के प्रताप से वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। 100 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग साधना में केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक्य विस्तृत निष्कलंक यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकाल से तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुनः उज्ज्वल करने के लिए तुम वसुधा तल पर जाओ। ब्रह्मा जी के ये शब्द समाप्त भी न हो पाए थे कि राजा इंद्रद्युम्न ने अपने को पृथ्वी पर पाया। वे अपने निवास स्थल कांपिल्य नगर में गए और वहां के निवासियों से अपने संबंध में पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा, हम लोग तो उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते, आप किसी वृद्ध चिरायु से पूछ सकते हैं। सुनते हैं नैमिषारण्य में सप्त कल्पांत जीवी मार्कंडेय मुनि रहते हैं, कृपया आप उन्हीं से इस प्राचीन बात का पता लगाइए। जब राजा ने मार्कंडेय जी से प्रणाम करके पूछा कि मुने, क्या आप इंद्रद्युम्न राजा को जानते हो, तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा एक मित्र है नाड़ी जंघपक, शायद उसे जानता हो, इसलिए चलो उससे पूछा जाए। नाड़ीजंघ ने अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनाई और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अपने से भी अति दीर्घायु प्राकाराकर्म उल्लूक के पास चलने की सम्मति दी। पर इसी प्रकार सभी अपने को असमर्थ बतलाते हुए चिरायु गृद्धराज और मानसरोवर में रहने वाले कच्छप मंथर के पास पहुंचे। मंथर ने इंद्रद्युम्न को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप लोगों में जो ये पांचवा राजा इंद्रद्युम्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसी के यज्ञ में मेरी पीठ पृथ्वी की उष्णता से जल गई थी। अब राजा की कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई, पर उसने क्षयिष्णु स्वर्ग में जाना ठीक न समझा और मोक्ष साधन की जिज्ञासा की। एतदर्थ मंथर ने लोमश जी के पास चलना श्रेयस्कर बताया। लोमश जी के पास पहुंचकर यथाविधि प्रणाम आदि करने के पश्चात मंथर ने निवेदन किया कि इंद्रद्युम्न कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। महर्षि लोमश की आज्ञा लेने के पश्चात इंद्रद्युम्न ने कहा, महाराज, मेरा प्रथम प्रश्न तो ये है कि आप कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप और वृष्टि से बचने के लिए केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिए रहते हो। मुनि ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, फिर शरीर का निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? यौवन, धन तथा जीवन, ये सभी चले जाने वाले हैं। ऐसी दशा में दान ही सर्वोत्तम भवन है। इंद्रद्युम्न ने पूछा, मुने, ये आयु आपको दान परिणाम में मिली है अथवा तपस्या के प्रभाव से? मैं ये जानना चाहता हूँ। लोमश जी ने कहा, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र और नीच कुल में पैदा हुआ था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करके मैंने कमल के सुंदर फूलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और पुनः मैं आगे चल दिया। क्षुधातुर होने के कारण मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। शिव पूजा के फलस्वरूप मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। मैंने जानबूझकर मूर्खता धारण कर ली। पिताजी की मृत्यु हो जाने पर संबंधियों ने मुझे नीरा गुंगा जानकर सर्वथा त्याग दिया। अब मैं रात दिन भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। प्रभु चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मुझे इतनी दीर्घ आयु दी। ये जानकर इंद्रद्युम्न, बक, कच्छप, गिद्ध और लूक ने भी लोमश जी से शिव दीक्षा ली और तप करके मोक्ष प्राप्त किया।

अभी आपने सुना चिंतन, प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर हुकुम शर्मा। एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:10 हो चुके हैं और ये समय रहता है कार्यक्रम रूपरेखा का, यानी कि जानेंगे कि आज दिन भर एफएम शिमला से किस समय आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन पाएंगे। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 7:15 पर आप इंजॉय कीजिएगा गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का समय रहेगा 7:57, 8:30 और 9:57। हिंदी समाचारों में समाचार प्रभात 8:00, प्रादेशिक समाचारों में 9:20 पर 11:00, दोपहर 3:00 और सुन सकते हैं आप 6:30 और शाम 7:45 पर। इसके अलावा दोपहर 12:00, 1:00, 2:15 पर और शाम 8:45 पर आप हिंदी में समाचार सुन पाएंगे। रात 11:00 का समय भी रहेगा हिंदी समाचार का और अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा 8:15, दोपहर 12:05, 1:05, शाम 7:05 और रात 11:05। हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में, 11:30 पहाड़ी संगीत में और 2:30 पर शिखरों के स्वर कार्यक्रम में। आठ पर सुनना ना भूलिएगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे तंबाकू और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रविंदर कुमार से सपना ठाकुर की बातचीत। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे 9:00, 12:10 पर, दोपहर 1:10 पर, 3:10 पर ओल्ड हिट्स में और शाम 8:30 पर। कुदरत के रंग, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं 9:30 पर, 10:00 सुनेगा सदाबहार गीत और 11:05 पर लेकर हाजिर रहेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 12:20 पर और 2:00 सुनेगा सब रंग कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी, ये आप सुन सकते हैं 3:05 पर और 3:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। 4:00 आज आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत 5:00 मंडियाली कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। पंगवाली कार्यक्रम का समय रहेगा 5:20, 6:06 पर सुनिएगा कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर आप सुन पाएंगे लाहौली कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम, रोज की तरह आप सुनेंगे 7:10 पर और 8:00 आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 9:15 का समय रहेगा एक फिल्म से कार्यक्रम का, जिसमें आपके लिए लेकर आएंगे किसी एक फिल्म के गीत। 9:30 पर आप सुन सकते हैं दिल की आवाज़ भी सुन। रात 10:00 गज़लों का कार्यक्रम, आप सुनेंगे गज़लें और 10:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। तो ये थे आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम, जिनका लुत्फ आप उठा सकते हैं एफएम शिमला से।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला से अब आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारी लाइफ में अप्स डाउन्स बहुत आते रहते हैं, लेकिन यदि परिस्थितियों का सामना हंस कर करेंगे और कठिन समय में भी हमें मुस्कुराना आ जाए तो ज़िंदगी भी आईना बनकर मुस्कुरा जाती है। आज है 28 मई और हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घट ही जाती है जो इतिहास रच जाती है। क्या है 28 मई का महत्व इतिहास के पन्नों पर, ये भी जानेंगे ज़रूर और साथ ही साथ करेंगे आपका मनोरंजन भी भरपूर। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: सॉन्ग तो आप एंजॉय कर ही चुके हैं और अब सबसे पहले अनंत शुभकामनाएं उन सभी लिसनर्स को जिनके लिए आज का दिन किसी न किसी वजह से खास है। जी हाँ, हम बात करते हैं आज के दिन की, यानी कि 28 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और जागरूकता बढ़ाना। अगर बात करें देश और दुनिया के इतिहास की, तो 28 मई का दिन क्यों खास है, सबसे पहले जानते हैं नेपाल का। नेपाल में आज के दिन 240 सालों से चली आ रही राजशाही का अंत हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। करीब 10 साल तक चले गृह युद्ध के बाद देश में शाह राजवंश के हाथों से देश की सत्ता जाती रही और इसके बाद से माओवादी देश की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हुए थे। 28 मई 2008 को ही नेपाल के वामपंथी दल को चुनाव में जीत मिली और तब तत्कालीन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र को अपदस्थ कर देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था और देश दुनिया के इतिहास में 28 मई का दिन और भी कई घटनाओं के लिए दर्ज है। तो वर्ष 1414 में खिजर खान ने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया था और सैयद वंश के शासन की नींव रखी थी। 1883 में 28 मई को ही हिंदुत्ववादी नेता और कवि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था और 1908 में जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक यान फ्लेमिंग का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और अगर हम बात करें आगे की, तो वर्ष 1923 में दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय नामों में शुमार नंदमूरी तारक रामा राव का जन्म भी आज के दिन यानी कि 28 मई को ही हुआ था और फिल्मों में अपार सफलता हासिल करने के बाद एनटीआर ने राजनीति का रुख किया और 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाली। वर्ष 1959 में 2 अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की थी 28 मई को ही और 28 मई 1934 में कनाडा के ओंटारियो में ओलिवा और एल्सायर ट्यून के यहाँ 5 बच्चों ने जन्म लिया और इतिहास में यह पहला मौका था जब एक साथ 5 बच्चे जीवित भी रहे थे। 1970 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का औपचारिक तौर पर विभाजन हुआ था और 1996 में 28 मई के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा भी दिया था। वर्ष 2002 में नेपाल में फिर आपातकाल लगा था और 2008 में, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, राजशाही का अंत हुआ था और 2008 में ही 28 मई के दिन अमेरिका ने पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के 4 नेताओं पर वित्तीय प्रतिबंध लगाया था। और भी जानेंगे कुछ खास आज के दिन के बारे में, पहले सुन लेते हैं ये गीत, आइए सुनते हैं।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज के इतिहास की, यानी कि 28 मई के इतिहास की। ये तारीख हमें अतीत की उन घटनाओं की याद दिलाती है जिन्होंने देश और दुनिया के इतिहास को एक नई दिशा देने में भूमिका निभाई। जी हाँ, और 28 मई का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। भारत और विश्व दोनों स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति और बदलाव को ये दिन दर्शाता है, और इस दिन राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से कई अहम घटनाएं दर्ज की गई जिनमें भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विकास और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी उपलब्धियाँ भी शामिल हैं। वर्ष 1926 में आज के दिन नागपुर के मोइते के बाड़े में एक ऐतिहासिक घटना हुई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की पहली शाखा प्रारंभ की गई थी, और इस शाखा की शुरुआत का उद्देश्य समाज में अनुशासन, संगठन, राष्ट्रभक्ति और सेवा भावना को बढ़ावा देना था। प्रारंभिक समय में ये एक छोटा सा संगठनात्मक प्रयास था, लेकिन धीरे धीरे ये भारत के सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों में से एक बन गया। और भी बहुत कुछ घटा आज के दिन। जी हाँ, और मुंबई महापालिका ने 75 वर्ष पूरे होने पर वीर सावरकर का सम्मान किया था वर्ष 1958 में 28 मई को, और वर्ष 1970 में शासन द्वारा वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी की गई थी। वर्ष 2023 में दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए चूल शासकों के संगोल का को अध्यक्ष पीठ के पास स्थापित किया था, और वर्ष 2002 में 28 मई को नाटो रूस परिषद का गठन भी किया गया था। और भी बातें करेंगे, फिलहाल सुन लेते हैं एक और गीत।

गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला से। देखिए अब बात करते हैं मौसम की। अगर हम बात करें शिमला की, तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है मई का, तो शिमला के मौसम में बदलाव आता ही रहता है। और देखिए ना, कुछ दिनों से जो है गर्मी लगातार बढ़ रही है और मौसम बदल भी जाएगा, ऐसा अनुमान है। आज का मौसम यानी कि 28 मई का मौसम अगर हम देखें, तो पूरे भारत की अगर बात करें, तो उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने अगले 20 घंटे के अंदर 15 राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। और अगर बात करें सिर्फ शिमला की, तो शिमला के मौसम में एक सूक्ष्म बदलाव नज़र आने लगा है। मई के अंत में तापमान शुरुआती दिनों की तुलना में थोड़ा सा अधिक बढ़ गया है, लेकिन इससे आपको निजात थोड़ी कम होने वाली है। जी हाँ, थोड़ा मौसम का रुख बदलने वाला है, ठंडी हवाएं भी चलेगी और गर्मी से थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। अब बात करते हैं फिर से उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है। हमारे कई लिसनर्स आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे या किसी दूसरी वजह से भी आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये अनंत खुशियाँ लेकर आए आज का ये दिन। और जो आपकी सुबह सुहानी थी, ऐसे ही आपका दिन भी खुशनुमा रहे, यही उम्मीद करते हैं। और सुनाते हैं आपको कार्यक्रम में एक और गीत।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखिएगा।

एक बार फिर से जान लेते हैं। आज 8:45 पर आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, जिसमें आप सुन पाएंगे तंबाकू और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रविंदर कुमार से सपना ठाकुर की बातचीत। सदाबहार गीतों का आनंद आप लेंगे 10:00 और 11:05 पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम सुनिएगा। सबरंग कार्यक्रम लेकर हाजिर रहेंगे 2:00 और 12:20 पर आप सुन सकते हैं महिला सम्मेलन कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 3:05 पर, युववाणी कार्यक्रम 3:30 पर, और 4:00 सुनना ना भूलिएगा संदेश टू सोल्जर्स। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में 5:00 मंडियाली कार्यक्रम, 5:20 पर पंगवाली कार्यक्रम, 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर आप सुन पाएंगे लाहौली कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा 7:10 और 8:00 आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 9:15 पर एक फिल्म से कार्यक्रम सुनिएगा और रात 9:30 पर सुनना ना भूलिएगा दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। गजलें आप सुनेंगे रात 10:00 और 10:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।

0: एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। आज देश सहित प्रदेश भर में ईद उल अजहा पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार नागरिकों को मानवता और विशेषकर वंचितों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टेट सिंगल विंडो कमेटी और मॉनिटरिंग अथॉरिटी को सिंगल नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। इस संदर्भ में उद्योग विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के तहत ये एजेंसी औद्योगिक क्षेत्र और इंडस्ट्रियल पार्कों में उद्योग स्थापित करने से संबंधित मंजूरियों की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। प्रदेश में आज पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। चुनाव के बाद प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में आयोजित आईपीएल मुकाबले नए हिमाचल, खासकर धर्मशाला, कांगड़ा, मैक्लोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्रिकेट को नई पहचान देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर धूमल को मोदी युग में भारत का सशक्तिकरण नामक पुस्तक भी भेंट की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आज से हिमालय क्षेत्र में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

0: 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता

0: योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर

0: सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, ऐसा यार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा ऐसा यार। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली, रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज।

0: नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में नगर परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समय की शर्त को समाप्त कर दिया है। अब संबंधित जिला के उपायुक्त या उपमंडलाधिकारी अपने अनुसार बैठक की रूपरेखा बनाएंगे। कल शहरी विकास विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। पहले चुनाव के एक सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने की शर्त थी, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। सरकार का तर्क है कि अब अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और स्पष्ट हो जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कल शिमला जिला के नेरवा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विद्यार्थियों के सवालों के जवाब में कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेंगी और उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य भी इन घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में हुआ है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर। FM शिमला से ये समय है लोक संगीत का, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृष्णलाल सहगल के गाए इस लोकगीत से।

0: इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। अब आप सुने थे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में तंबाकू और स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर रविंदर कुमार से सपना ठाकुर की बातचीत। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के संग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ कार्यक्रम में हाजिर हुए हैं।

0: आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज युवा इसकी चपेट में आ रहा है। तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। इसमें मौजूद निकोटिन और जहरीले रसायन धीरे धीरे गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। तो आज रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का विषय रखा गया है तंबाकू और स्वास्थ्य। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर रविंद्र। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो 31 मई को मनाया जा रहा है, तो इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत वर्ष 1987 से हुई थी और इसकी शुरुआत WHO के द्वारा की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को तंबाकू के नुकसान के बारे में जागरूक करना और तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। तंबाकू केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि यह कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण है। इस दिन हम लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश देते हैं।
0: डॉक्टर रविंदर, तो इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है?
1: जो इस वर्ष की थीम जो WHO ने रखी है वो है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, मतलब आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। असल में बात यह है कि आजकल तंबाकू और निकोटीन कंपनियां रंगीन पैकिंग, फ्लेवर, सोशल मीडिया के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट, ई सिगरेट और वेपिंग जैसे तरीकों से युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इस वर्ष के थीम का उद्देश्य टोबैको इंडस्ट्री की इन चालों को लोगों के सामने लाना और खासकर बच्चों और युवाओं को जागरूक करना है।
0: अब बात आती है कि तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: तंबाकू का सेवन बहुत ही खतरनाक है। इसके सेवन से शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचता है। इसमें हजारों जहरीले रसायन होते हैं और कई कैंसर पैदा करने वाले इसके अंदर तत्व होते हैं। तंबाकू के सेवन से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, दमा, टीबी, इस तरह की कई गंभीर बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तंबाकू के कारण होती है। भारतवर्ष में ही ये आंकड़ा लगभग 13.5 लाख का है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका नुकसान धीरे धीरे होता है और कई बार बीमारी बहुत देर से पता चलती है।
0: डॉक्टर रविंदर, तो अब अहम सवाल ये है, क्या तंबाकू का हर रूप स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है?
1: बिल्कुल, ना सिर्फ सिगरेट और बीड़ी नुकसान करती है बल्कि जिसको एक हम स्मोकलेस टोबैको बोलते हैं, गुटखा, खैनी या कई बार पान मसाला और जर्दा, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 90% से ज्यादा मुंह के कैंसर होने का कारण धूम्र रहित तंबाकू है, जिसको हम लोग स्मोकलेस टोबैको भी बोलते हैं। ना केवल कैंसर होता है बल्कि दांत खराब होते हैं, मसूड़ों की बीमारियां, मुंह का ना खुलना और कैंसर जैसी गंभीर समस्या होती है। कहने का मतलब ये है कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है।
0: हिमाचल प्रदेश में तंबाकू की स्थिति कैसी है इस समय?
1: अगर किसी भी राज्य में और किसी भी देश में ये देखना हो कि कितने लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, उसके लिए WHO ने एक सर्वे बनाया है जिसका नाम है ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे पहले 2009 और 2010 में हुआ, उसके बाद ये सर्वे 2016 और 2017 में हुआ। तो 2016 और 2017 के सर्वे में हमें पता चला कि हिमाचल में 15 वर्ष से ज्यादा आयु के जो पॉपुलेशन है उसमें से 16% किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि 2009-10 में ये परसेंटेज 21% थी। पिछले कुछ सालों में जो टोबैको यूज करने वाले लोगों के नंबर में कमी आई है और आज की डेट में ये सर्वे तीसरा राउंड चल रहा है। 3 या 4 महीने के बाद हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमें और कितना डिक्लाइन हुआ। अगर हम गेट सर्वे 2 को ही देखें तो इसके मुताबिक अभी भी कम से कम 6 से 7 लाख हिमाचली तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं। अगर आप नंबरों के हिसाब से देखें तो हाँ, नंबर ये अभी भी ज्यादा है लेकिन डेफिनेटली डिक्लाइन जरूर हुआ है पिछले कुछ वर्षों में।
0: युवाओं और बच्चों में इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या युवा ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, बच्चे चपेट में आ रहे हैं?
1: जी, अगर हम ये देखें कि जो लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनसे पूछा जाए कि उन्होंने तंबाकू का सेवन कब किया, तो अधिकांश लोगों ने सेवन अपने बचपन में और युवावस्था में ही किया है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन होती है। निकोटीन बहुत तेजी से लत लगाता है और कम उम्र में लगी हुई आदत को छोड़ना भी मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल तंबाकू की कंपनियां अपने प्रोडक्ट में अलग अलग तरह के फ्लेवर डालती है, सोशल मीडिया के थ्रू उसको एडवर्टाइज करती है और बहुत अच्छी आकर्षण

0: पैकेजिंग की वजह से बच्चों और युवाओं को अपना निशाना बनाती है।
1: जी
0: अगर हम युवाओं को तंबाकू से बचा लें तो आने वाली पीढ़ियों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है, और इसी वजह से इस बार की वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम भी रखी गई है।
1: डॉक्टर अवेदलर, क्या पैसिव स्मोकिंग यानी दूसरों के धुएं से भी शरीर को नुकसान पहुंचता है?
0: बिल्कुल, ये देखा गया है कि जो एक व्यक्ति खुद स्मोकिंग करता है उसमें जो जिस तरह की बीमारियां होती हैं उसी तरह की बीमारियां उसके घर में या उसके कार्यस्थल में जो दूसरे व्यक्ति होते हैं अगर वो सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर में आते हैं तो उनको भी उसी तरह की बीमारियां होती है। और खासकर ये सेकेंड हैंड स्मोक बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और बुजुर्गों के लिए और भी खतरनाक है। इससे दमा, निमोनिया, हार्ट डिजीज, फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ता रहता है, और यही वो वजह है कि कानून के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया हुआ है।
1: डॉक्टर वेंदर, तो क्या तंबाकू नियंत्रण के लिए देश में कोई कानून भी है इस समय?
0: बिल्कुल, देश में जो कानून है वो 2003 में कोटपा एक्ट के नाम से पूरे प्रदेश में ये लागू है। इसके मुताबिक सार्वजनिक जगहों पे धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू नहीं बेचा जा सकता। स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और जो भी टोबैको के प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर एक स्टैंडर्डाइज पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग जो है वो लगाना अति जरूरी है। ये तो रहा भारत का कानून। इसके अंतर्गत हमारे राज्य में वर्ष 2016 से हिमाचल प्रदेश टोबैको रेगुलेशन एक्ट भी लागू है। इसके अंतर्गत बिना लाइसेंस कोई भी दुकानदार तंबाकू नहीं बेच सकता। प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ी बेचने पे रोक है, और अगर ये नियम तोड़ेंगे तो इसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है और इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ और एक्ट जो है वो भारत में है, पर मुख्यतः तंबाकू के लिए ये जो दो एक्ट मैंने कहे ये हिमाचल प्रदेश में लागू है।
1: तंबाकू विक्रेताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: तंबाकू विक्रेताओं से मेरा अनुरोध है वो पूर्णतः कोटपा और हिमाचल प्रदेश टोबैको रेगुलेशन एक्ट का पूरी तरह से पालन करें। अगर आपने तंबाकू बेचना है तो लाइसेंस आप जरूर लीजिए। लाइसेंस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव के यहाँ पे आवेदन करिएगा। शहरी क्षेत्रों में आप नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन कीजिए। मामूली सी इसकी फीस है, 3 वर्ष के लिए लाइसेंस बनता है। बिना लाइसेंस से बिक्री करेंगे भारी जुर्माना पड़ेगा। और दूसरा, लाइसेंस सभी विक्रेताओं को नहीं मिलेगा। स्कूल के 100 गज के दायरे में अगर कोई अप्लाई भी करता है उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और दूसरी हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से टोबैको रेगुलेशन को पूर्णतः पालन कीजिएगा।
1: डॉक्टर रविंदर, तंबाकू निषेध दिवस के अभियान के इस अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि टॉफिक गाइडलाइंस क्या है?
0: जी, सो टॉफिक गाइडलाइंस का मतलब है टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सर्वप्रथम 2009 में भारत सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस निकली थी। उसके बाद इसका जो रिवाइज वर्जन है वो 2019 में आया, और हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने 2020 में इन टॉफिक गाइडलाइंस को पूरी तरह से अपने राज्य में लागू किया। इसका मतलब है, इसका उद्देश्य है, हम अपने हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इवन कोचिंग सेंटर, इन हर एक इंस्टीट्यूशंस को हमें पूरी तरह से तंबाकू मुक्त बनाना है। इसके लिए हमने स्कूल परिसर में तंबाकू पदार्थों का लाना, उसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। लगातार जागरूकता गतिविधियां जो हैं वो चलाई जा रही हैं, और मुझे ये बात आपके साथ साझा करने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्ष हमने अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में हिमाचल में टॉफी गाइडलाइंस के ऊपर काम किया। शिक्षा विभाग के साथ मिलकर करीब 9500 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टॉफी सर्टिफिकेशन के द्वारा हमें जो है उनको टॉफी कंप्लाइंट किया। और आजकल वर्ल्ड नो टोबैको डे अभियान चला है, और हमें पूरी उम्मीद है 14 जून तक जब यह अभियान खत्म होगा तो हम बाकी बचे हुए हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टॉफी गाइडलाइन का सर्टिफिकेशन दे पाएंगे।
1: डॉक्टर रविंदर, तो सबसे अहम बात ये आती है कि आज के समय में तंबाकू के कौन कौन से रूप युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं और ये कितने सुरक्षित हैं?
0: आज के समय में टोबैको इंडस्ट्री ने अलग तरह के प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाना शुरू कर दिए हैं, और जिसमें से एक प्रोडक्ट है ई सिगरेट, जिसको वेपिंग भी बोलते हैं। असल में ये केमिकल निकोटीन है जो अलग अलग रूप में, अलग अलग साइज में, मॉडल में ये मार्केट में पिछले 8-10 वर्षों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। इसका प्रचलन युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसमें निकोटीन भी है और कई तरह के जहरीले रसायन है, और इसकी मार्केटिंग की जा रही है कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसका नुकसान जो है वो कन्वेंशनल सिगरेट से कम है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इसमें भी स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव है, और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। लेकिन ये हमें सुनने में आया है और बीच बीच में हमें मालूम भी

0: चलता है कि एक कंपनी जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको बेच रही है। इसके ऊपर कड़ा संज्ञान विभाग द्वारा लिया भी जा रहा है, लेकिन मैं युवाओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी लत मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें निकोटीन है। एक बार लत लगेगी तो उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1: बहुत से लोग मानते हैं कि हुक्का सुरक्षित होता है, क्या ये सही है? और आजकल हम ये भी देखते हैं कि हुक्का बार युवाओं में फैशन बन रहा है।
0: हमें एक अलग तरह का चैलेंज पिछले कुछ वर्षों में हुक्का की फॉर्म में देश भर में ये आना शुरू हो गया है। हुक्का बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सामान्य तौर के ऊपर देखा गया है कि एक हुक्का करीब आधा घंटा 45 मिनट जब उसको यूज करते हैं तो उसके अंदर सिगरेट से 25 गुना ज़्यादा निकोटीन का सेवन होता है। सो आप ये मान के चलिए कि हुक्का कन्वेंशनल सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके धुएं में भी निकोटीन होती है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और इसमें भी कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं। और ज़्यादातर हमने जो हुक्का देखा है उसमें फ्लेवर्स डाले होते हैं, फ्लेवर के अंदर भी कैंसर पैदा करने वाले बहुत से कारक होते हैं। ये भी गंभीर बीमारियों का एक कारण बनता है। तो
1: जी
0: मैंने जैसे पहले ही कहा है, किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
1: हानिकारक
0: है,
1: है।
0: इससे जितना बचा जाए उतना ही बेहतर है।
1: डॉक्टर रविंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हिमाचल प्रदेश में क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं?
0: जी, सो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो है 31 मई को, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम ये जागरूकता अभियान और अन्य गतिविधियां पूरा 1 महीना इस अभियान को चला रहे हैं। 15 मई से लेकर 14 जून तक पूरे इस महीने में हम लोग स्कूलों और कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां और प्रतियोगिताएं हो रही है। टॉफी अभियान के अंतर्गत हम स्कूलों और कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टॉफी कंप्लाइंट बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग टोबैको फ्री विलेज अभियान भी चला रहे हैं, जहाँ पे सामुदायिक सहभागिता के साथ पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर उस गाँव में जागरूकता अभियान चला के उसको टोबैको फ्री विलेज सर्टिफिकेट करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून की पालना करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्लाइंग स्क्वाड्स गठित की हुई हैं, राज्य स्तर में, जिला स्तर के ऊपर और ब्लॉक स्तर के ऊपर। इन 1 महीने के अंतर्गत हम लोग इन वायलेशन को चेक करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो रेड्स भी कर रही है और इसमें जुर्माना भी कर रही है। सोशल मीडिया के हम लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और चूंकि ये तंबाकू को छुड़वाने के लिए हम लोग काउंसलिंग सेशन जो है अपने स्वास्थ्य के अलग अलग संस्थानों में चला रहे हैं, और ये अभियान अकेला स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, हमें इसमें सहयोग मिल रहा है शिक्षा विभाग का, पुलिस विभाग का, पंचायती विभाग का और साथ में
1: सब
0: नगर
1: लोग
0: निगम,
1: मिलकर काम
0: हाँ
1: कर रहे
0: सबके साथ
1: हैं।
0: मिलकर काम कर रहे हैं। जी
1: जी,
0: हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि
1: सहयोग है।
0: क्योंकि टोबैको जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी
0: टोबैको के साथ में सभी विभाग अगर कार्य करेंगे तो हमें जो है निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे।
1: युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
0: मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि तंबाकू की शुरुआत कभी ना करें। अक्सर लोग दोस्तों के दबाव, फैशन या मजाक मजाक में शुरुआत करते हैं, लेकिन बाद में यह गंभीर लत बन जाती है। मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा, युवाओं को चाहिए कि वो गलत संगति से बचें, सोशल मीडिया के भ्रम में ना आए। और ये जो तंबाकू कंपनियां हैं ये नित नए नए रूप में, नए नए फ्लेवर डाल के, नए नए कलरफुल पैकेजिंग करके ये जो है अपने प्रोडक्ट्स को आप लोगों के लिए एडवर्टाइज कर रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, उनसे बचें। आप जो है खेल, योग और पॉजिटिव एक्टिविटीज में भाग लें, तनाव होने पर स्वस्थ विकल्प अपनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, तो मैं सबसे एक ही बात करता हूं, नेवर स्टार्ट इट, क्योंकि तंबाकू शुरू करना आसान है लेकिन छोड़ना बहुत कठिन।
1: डॉक्टर रविंद्र कुमार, आज हमने तंबाकू और स्वास्थ्य पर इस विषय पर आपसे जानकारी हासिल की। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। इसी के साथ रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप जुड़े हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे तो सबसे पहले सुनते हैं क्या दिल ने कहा फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और शान की।

एक लड़की बेकरार है, रूठे बार बार है, झूठा गुस्सा सच्चा प्यार है।

क्या कहना फिल्म का गीत आपने सुना। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और गीत को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM शिमला से। अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म दिल है तुम्हारा से और आवाज़ें हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर के बोल और संगीत है नदीम श्रवण का। आइए सुनते हैं।

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। PC हाईलाइट्स आइए सुनते हैं। जी हाँ, जानेंगे आज हमारे प्राइमरी चैनल से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 9:31 पर सुरमेला कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे। 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम रिमझिम। 11:05 पर समाचार एकांश की प्रस्तुति सर्विकल कैंसर पर वॉर, हिमाचल में HPV वैक्सीनेशन अभियान आप सुन सकते हैं। लोक संगीत का समय रहेगा 11:15।

मिनट पर। और इसके अलावा हिम गुंजन कार्यक्रम में आप लोक संगीत लोकगीत सुन पाएंगे 2:30 पर। 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम महिला सम्मेलन आप सुन सकते हैं 12:20 पर। और 1:10 पर आप सुनेंगे सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनहरी किरणें। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:00 और 3:05 पर। जिले की चिट्ठी सुनिएगा।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में 4:20 से आप सुन सकते हैं। 4:20 पर आप सुनेंगे मंडयाली कार्यक्रम 5:00, 5:20 पर पंगवाली, 6:06 पर कांगड़ी और 6:35 पर लाहौली कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 7:10 पर सुनेगा कृषि जगत कार्यक्रम। 8:00 लीजिएगा आनंद धारा रे गीत कार्यक्रम का और 8:30 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। गजलों का आनंद लीजिएगा रात 9:15 पर गुलदस्ता कार्यक्रम में। पुरानी फिल्मों के गीतों का आप आनंद उठाएंगे रात 10:30 पर। तो ये थे कार्यक्रम जिनका आनंद आप ले सकते हैं आज हमारे प्राइमरी चैनल से। आज के मुख्य कार्यक्रम आपने सुने। जुड़े हैं आप 103.7 MHz पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये समाचार सुन सकते हैं।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण का मतदान आज जारी। 1276 पंचायतों में हो रहा चुनाव। तापमान बढ़ने से प्रदेश के जंगलों में बढ़ी आग की घटनाएं। अब तक जंगलों में आग के 232 मामलों में 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में नई फसल का रोट चढ़ाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने किया शिमला का रुख। रोजाना पहुंच रहे 20,000 से अधिक वाहन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से

0: मतदान जारी है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 2276 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के आज कुल 17,30,030 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे अधिक करीब 4,00,000 मतदाता कांगड़ा जिला से है, जबकि सबसे कम 8,875 मतदाता लाहौल स्पीति में है। इस बीच 30 मई को तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। तीनों चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। आज देश सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ईद उल अजहा पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों में और ईदगाहों में विशेष नमाज अता की जा रही है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने मंगल कामना करते हुए कहा है कि ये त्यौहार समाज को सद्भाव, एकता और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के वन विभाग प्रमुख संजय सूद ने बताया कि अब तक राज्य में जंगलों में आग लगने के 232 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें करीब 2,900 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इन घटनाओं में अब तक लगभग 67,00,000 रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया है। संजय सूद ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभाव मंडी जिले में देखा गया है, जहाँ 85 मामले सामने आए हैं।
1: पूरे स्टेट में 232 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, छोटे बड़े मिलाकर तो लगभग 2,900 हेक्टेयर छोटा बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और जो उसमें टोटल जो हमने नुकसान आज तक अभी असेस किया वो 67,00,000 रुपीज़ का है। इंसिडेंट्स की बात है तो सबसे आगे इस समय मंडी में ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, 85 केसेज वहाँ के हैं। तो इस समय भी हमने करीब 2,000 बीट्स में अपने लोग डिप्लॉय कर रखे हैं। हमारे करीब 10 से 12 ड्रोन्स हैं, उनमें भी हम मदद ले रहे हैं। तो हम ड्रोन्स की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, तो ड्रोन से भी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट हमारे लिए अब थोड़ा आसान रहेगा। फायर लाइन्स होती हैं हमारी, वो भी हमने काफी अपनी मेंटेन की। तो 3,000 किलोमीटर की जो फॉरेस्ट फायर लाइन्स हैं उसको हमने मेंटेन किया। जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है और हम आगे आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा।
0: जनगणना प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्वगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। स्वगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्वगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और इसके बाद उन्हें स्वगणना आईडी नंबर मिलेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। हमीरपुर जिला के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में नई फसल का रोड चढ़ाने के लिए इन दिनों प्रदेश सहित पंजाब और हरियाणा से भी हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि नई फसल बाबा को अर्पित करने से घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में गत रविवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पंजाब हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने नई फसल

0: का रोड चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रखे। कई श्रद्धालु परिवार सहित शाहतलाई से पैदल यात्रा कर देवरसिद्ध पहुंचे। मान्यता है कि नई फसल बाबा को चढ़ाने से घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहा। दिन भर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का माहौल बना रहा और श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे रहे। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम लोगों के कानूनी विवादों को आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेडिएशन फॉर द नेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण के तहत ऊना जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्राधिकरण की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि अदालतों में चल रहे मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता से निपटाने की कोशिश इस अभियान में की जा रही है, जिससे समय और धन की बचत के साथ ही आपसी संबंधों को भी बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, संपत्ति विभाजन, भूमि अधिग्रहण तथा उपभोक्ता मामलों जैसे सुलह योग्य विवादों को प्राथमिकता दी जा रही है। देश से मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख किया है। गर्मियों में पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही शिमला में पर्यटन कारोबारियों में अच्छे कारोबार की उम्मीद बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में 24 दिनों में करीब 6,31,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि रोजाना 20,000 से अधिक वाहन पहुंचने से शहर में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए शहर को 5 सेक्टरों में बांटकर विस्तृत ट्रैफिक योजना तैयार की गई है। ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में 32 ट्रैफिक राइडर तैनात किए गए हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, नगर निकाय के नव निर्वाचित पार्षदों की 8 जून से पहले होगी शपथ। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, प्रदेश में 1279 पंचायतों के दूसरे चरण का मतदान आज, 11,000 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। पंजाब केसरी की खबर है, दूसरे चरण में आज हिमाचल की 1279 ग्राम पंचायतों में वोटिंग। नेरवा में छात्रों के तीखे सवाल, मुख्यमंत्री सुखू के बेबाक जवाब, दिव्य हिमाचल की एक खबर है। इसी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, छात्रों ने सीएम से पूछा एमएलए के लिए परीक्षा क्यों नहीं। पत्र को अन्य खबर है, गड़बड़ी की शिकायतों पर चुनाव आयोग सख्त, उपायुक्त को चेतावनी, दूसरे चरण में ना दोहराई जाए गलतियां। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, आज और कल बारिश, ओलावृष्टि की संभावना, प्रचंड गर्मी से मिलेगी राहत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज जारी, 1276 पंचायतों में हो रहा चुनाव। तापमान बढ़ने से प्रदेश के जंगलों में बड़ी आग की घटनाएं, अब तक जंगलों में आग के 232 मामलों में 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित। प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में नई फसल का रोड चढ़ाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने किया शिमला का रुख, रोजाना पहुंच रहे 20,000 से अधिक वाहन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी ये समाचार रिले किए गए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: ट्यूनिंग आप 103.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी FM शिमला के साथ 9:30 हुए हैं और बड़ी बेसब्री से आपको होगा इंतज़ार आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कुदरत के रंग का। जी हाँ, तो आपकी बेकरारी को समझते हुए कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम, और कार्यक्रम में आज बात करेंगे खूबसूरती की। और हमेशा ही हम प्रकृति की खूबसूरती की बात करते हैं। कुदरती सौंदर्य अनुपम अतुलनीय होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन कुदरत ने इस जहान को सराबोर किया है बेमिसाल खूबसूरती से।

और सबसे सुंदर रचना प्रकृति की क्या है हम कह नहीं सकते, लेकिन खूबसूरती का जब भी जिक्र होता है तो चांद और फूलों का ध्यान आ ही जाता है। बातें करेंगे बहुत सारी, बहरहाल एंजॉय करते हैं ये सॉन्ग।

नन्हे शिशु की मुस्कान की भांति ही फूलों का मुस्कुराना भी शायद सभी को प्रिय लगता है ना। और हाँ, ये बात अलग है कि यदि आपका मन कहीं और है, किसी के ख्यालों में खोया है, तो ऐसे में फूलों की खूबसूरती का लुत्फ आप तभी उठा सकते हैं जब आपका अपना प्रिय आपके साथ हो। जी हाँ, हिमाचल में अनेक खूबसूरत दर्शनीय स्थल हैं जो अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं, और हम अक्सर उन पर्यटन स्थलों की बात भी करते हैं कुदरत के रंग कार्यक्रम में। और आज हम थोड़ा सा हटके बात करेंगे, उत्तराखंड की फूलों की घाटी की हम बात करेंगे। जी हाँ, फूल एक ऐसी रचना है कुदरत की जो सबका मन भी मोह लेते हैं, और खूबसूरती में भी इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तभी तो प्रियतम अपनी प्रियतमा की तुलना, मुख की तुलना फूलों से करते हैं, और कई बार चांद से भी कर लेते हैं। बात करेंगे फूलों की घाटी की। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, और ये भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। ये फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक भाग है, और हिमालय क्षेत्र पिंडर घाटी और पिंडर वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। और बता देते हैं आपको कि फूलों की घाटी यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी का जन्म पिंडर से हुआ है, जिसे पिंडर घाटी भी कह सकते हैं। पिंड और घाटी, पिंड का अर्थ है हिम और घाटी का अर्थ है पहाड़ों का क्षेत्र जहाँ महादेव भगवान शिव का निवास होता है, जो मुख्य रूप से चमोली जिले के पिंडर घाटी का ही क्षेत्र है, और देवी देवताओं का निवास स्थान है ये। और आज भी पिंडर घाटी में भगवान शिव के गण और देवताओं के वंशज निवास करते हैं, और हर वर्ष माता पार्वती नंदा देवी को हिमालय तक भगवान शिव के तपस्वी स्थान तक पहुंचाने आते हैं, और वर्तमान में नंदा देवी यात्रा या भगवती भेंट से भी इसे जाना जाता है। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अनाड़ी फिल्म का गीत आपने सुना। कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला से, और हम बात कर रहे हैं फूलों की घाटी की। किंवदंती ये भी है कि रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे, और इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी आरएल होल्ड्सवर्थ ने लगाया था, जो संयोग से 1931 में अपने कमेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे। इसकी बे इंतहा खूबसूरती से प्रभावित होकर ही स्मिथ ने 1937 में इस घाटी में वापस लौटने का निश्चय किया, और 1937 में ही वे वापस भी आए। 38 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से एक किताब प्रकाशित उन्होंने की, और पर्वतों पर बर्फ से लदा हुआ ये बहुत ही अच्छा उन्हें लगा, और फूलों की 500 अधिक प्रजातियों से सजा हुआ ये क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों या फूल प्रेमियों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध स्थल भी बन चुका है। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ भ्रमण करना चाहें तो किस मौसम में हमें यहाँ जाना चाहिए। बता देते हैं आपको कि फूलों की घाटी भ्रमण के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों को सबसे अच्छा माना जाता है। और एक ख़ास बात ये है कि सितंबर महीने में यहाँ पर ब्रह्म कमल भी खिलते हैं। फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए चमोली ज़िले का अंतिम बस अड्डा गोविंद घाट 275 किलोमीटर दूर है इससे, और जोशी मठ से गोविंद घाट की दूरी 19 किलोमीटर है। यहां से प्रवेश स्थल की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है, जहां से पर्यटक 3 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी फूलों की घाटी में घूम सकते हैं। नवंबर से मई महीने के मध्य घाटी सामान्यतः हिमाच्छादित रहती है, और जुलाई और अगस्त माह के दौरान एल्पाइन जड़ी की छाल की पंखुड़ियों में रंग छिपे रहते हैं। यहाँ सामान्यतः पाए जाने वाले फूलों के पौधों में एनीमोन, जर्मेनियम, मार्श गेंदा, प्रिफुला पोंटेटिला, जीवम, तार्क, लिलियम, हिमाली नीलापोस्त, बचनाग, डेल्फिनियम, रानू नकुलस, कोरिडालिस, इंडोला, सिसरिया, कंपानूला और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन ये इसमें प्रमुख हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और गीत, क्योंकि गीत संगीत भी ज़रूरी है।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। समय है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच 30 मई को तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल अब व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। तीनों चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही है। प्रदेश के वन विभाग प्रमुख संजय सूद ने बताया कि अब तक राज्य में जंगलों में आग लगने के 232 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें करीब 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इन घटनाओं में अब तक लगभग 67 लाख रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया है। संजय सूद ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रभाव मंडी ज़िले में देखा गया है, जहाँ 85 मामले सामने आए हैं। देश में हो रही जनगणना प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपने और परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्वगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। स्वगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्वगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद उन्हें स्वगणना ID नंबर मिलेगा। आज देश सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ईद उल अजहा पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इसमें बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अता की जा रही है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने मंगल कामना करते हुए कहा कि ये त्यौहार समाज को सद्भाव, एकता और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
0: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए जान लेते हैं एक बार आज के मुख्य आकर्षणों के बारे में भी। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे 11:05 पर, महिला सम्मेलन 12:20 पर, 2 बजे सबरंग, 3 बजे जिले की चिट्ठी 3:05 पर और युववाणी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 3:30 पर। 4 बजे सुनना ना भूलिएगा संदेश टू सोल्जर्स। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम 5 बजे से शुरू हो जाएंगे और 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे। भूले बिसरे गीत आप सुन सकते हैं 8 बजे और 9:15 पर एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे। दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30। 10 बजे उठाएंगे लुत्फ गज़लों का और सदाबहार नगमे आप सुनेंगे रात 10:30 पर।

हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और एफएम शिमला से इस समय आप आनंद लेंगे सदाबहार गीतों का। हमेशा की तरह चुनिंदा फिल्मी गीत लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए, जो दिलों पर तो राज करते ही है, सीधा आपकी रूह तक उतर जाएंगे। दिल को छू लेने वाले बोलों और शानदार गायकी के साथ आइए सुनते हैं दिल वाले फिल्म का ये गीत।

चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा। तो

0: ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से।
0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अब जो गीत आपको सुनाने जा रहे हैं वो हमने लिया है दिल फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला से। बॉलीवुड और संगीत की दुनिया में 50 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक के कई रोमांटिक और मेलोडियस सॉन्ग्स को सदाबहार गीतों की श्रेणी में रख सकते हैं हम, क्योंकि ये गीत सदाबहार इसलिए हैं क्योंकि दशकों पुराने होने के बावजूद भी आज भी सुनने में उतने ही ताज़ा और सुकून भरे लगते हैं जैसे कि रिलीज़ होने के समय लगते होंगे। जी हाँ, और कार्यक्रम चला है, बहरहाल सुन लेते हैं एक संदेश।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: सरगम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, आनंद बख्शी के बोल, और संगीतबद्ध किया था गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और हम सभी जानते हैं कि अपने समय में सुपरहिट रहा था ये गीत। गीत संगीत का सिलसिला अभी थमने नहीं देंगे, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। उससे पहले एक संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: सदाबहार गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला से। और देखिए ना, अब घड़ी की सुइयां भी जाने का इशारा कर रही है, तो जल्दी से सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसी गीत के साथ सदाबहार गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़े हैं आप एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 1276 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में आज कुल 17,30,030 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे अधिक करीब 4,00,000 मतदाता कांगड़ा जिला से है, जबकि सबसे कम 8,875 मतदाता लाहौल स्पीति में है। इस बीच 30 मई को तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल अब व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। तीनों चरणों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। इस बीच आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासकर पहली

0: बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर हिस्सा लिया और अन्य लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की।
1: मेरा नाम आरती है, मैं गांव मालोवाला की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रहने वाली हूं। आज मैंने पंचायती चुनाव में अपना पहला वोट दिया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। आप सभी भी अपना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मेरा नाम तपस्या है, मैं गांव बनकला सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूं। आज मैंने अपना अधिकार पूरा किया है वोट डालकर, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपना वोट डालकर अपना अधिकार पूरा किया है।

0: समस्या है। मैं गांव बनकला सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूँ। आज मैंने अपना अधिकार पूरा किया है वोट डालकर, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपना वोट डालकर अपना अधिकार पूरा किया है।
1: प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। प्रदेश के वन विभाग प्रमुख संजय सूद ने बताया कि अब तक राज्य में जंगलों में आग लगने के 232 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से करीब 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इन घटनाओं में अब तक लगभग 67 लाख रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया है। संजय सूद ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रभाव मंडी ज़िले में देखा गया है, जहाँ 85 मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम लोगों के कानूनी विवादों को आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मेडिटेशन फॉर द नेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण के तहत ऊना जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्राधिकरण की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि अदालतों में चल रहे मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता से निपटाने की कोशिश इस अभियान में की जा रही है, जिससे समय और धन की बचत के साथ ही आपसी संबंधों को भी बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, हिंसा, चेक बाउंस, संपत्ति विभाजन, भूमि अधिग्रहण तथा उपभोक्ता मामलों जैसे सुलह योग्य विवादों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमीरपुर जिला के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में नई फसल का रोड चढ़ाने के लिए इन दिनों प्रदेश सहित पंजाब और हरियाणा से भी हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि नई फसल बाबा को अर्पित करने से घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस द्वारा पूरी तरह मुस्तैद है और आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई है। देश से मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख किया है। गर्मियों के पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही शिमला में पर्यटन कारोबारियों में अच्छे कारोबार की उम्मीद बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में 24 दिनों में करीब 6,31,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि रोजाना 20,000 से अधिक वाहन पहुंचने से शहर में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए शहर को 5 सेक्टरों में बांटकर विस्तृत ट्रैफिक योजना तैयार की गई है। ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में 32 ट्रैफिक राइडर तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। और एक बार फिर से आइए आप और हम सफर तय करें पुराने फिल्मी गीतों का अब से लेकर 11:30 तक। और इस सुहाने सफर में आप और हम हैं एक साथ FM शिमला पर।

देखिए, ये खुशी जो है हमेशा बरकरार रहनी चाहिए आपके इस खूबसूरत से चेहरे पर। वैसे देखा जाए तो कभी कभी ज़िंदगी में ना, जिससे हमारी मुलाकात होती है उसका पता ही नहीं होता कि साधारण सी मुलाकात ख़ास कब बन जाती है, मिसाल कब बन जाती है इस दुनिया के लिए। ऐसे ही मुलाकात हुई थी शकील बदायूनी और नौशाद साहब की भी, जो धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई और बन गई फिल्मी जगत के लिए बहुत ही खास। तभी तो ज़रा गौर कीजिएगा कि नौशाद साहब के ज़्यादातर कॉम्पोजिशंस पर सॉन्ग्स जो हैं वो शकील बदायूनी ने ही लिखे हैं। उन तमाम गीतों से एक गीत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एफएम शिमला पर प्रोग्राम है पुराने फिल्मी गीत और मैं हूँ आपके साथ आपके हमसफर भानुप्रिया वर्मा।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीत भानुप्रिया वर्मा के साथ, और अब आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं वहीदा रहमान और बिस्वजीत पर पिक्चर राइज सॉन्ग फिल्म 20 साल बाद से। आवाज हेमंत कुमार की है।
3: नजरों से कह दो जी,

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: पुराने फिल्मी गीत सुन रहे हैं आप एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब बात एक ऐसी जोड़ी की जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग से। शोले, दीवार, जंजीर, त्रिशूल, काला पत्थर, शक्ति, डॉन, सीता और गीता, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कि सुपर हिट मूवीज शामिल हुई। और इन फिल्मों की अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो ये स्क्रिप्ट लिखने का क्रेडिट जाता है सलीम और जावेद की जोड़ी को। ये जोड़ी फिल्मी दुनिया की पहली ऐसी जोड़ी है जिन्होंने बिल्कुल स्टार स्टेटस अचीव किया है। 1971 से 1987 तक ज़्यादातर मूवीज़ के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग, या मैं कहूँ स्क्रीन राइटिंग, एक साथ इन्होंने की, और बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट स्टोरी के अवार्ड्स इसी जोड़ी के नाम रहे। बने रहिए हमारे साथ एफएम शिमला पर कुछ ऐसे ही इंफोटेनिंग प्रोग्राम्स के लिए।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: वो कहते हैं कि कोई मंजर सदा नहीं रहता यहाँ, यहाँ हर कोई ताल्लुक मुसाफिराना है।

0: आज फिलहाल पुराने फिल्मी गीतों के सफ़र को यहीं पर थामते हैं, लेकिन एफएम शिमला पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, तो बने रहिए हमारे साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर कुछ और एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स के लिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
2: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
3: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
2: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब एफएम शिमला पर आइए आप और हम मिलकर सिलसिला शुरू करते हैं पहाड़ी गीत संगीत का। तो ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अब से लेकर 12 बजे तक, और आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का इस लोक भजन के साथ।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और हिमाचली लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं समूह स्वर में। अब सुनिए कार्यक्रम का ये लोकगीत।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: आपका गांव है आपका गर्व। इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
4: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं

0: की जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर हिमाचली लोकगीत आप सुन रहे हैं 103.7 MHz से हमारी फ्रिक्वेंसी। और अब यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला लोकगीत शांति हेटा की आवाज़ में।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत एफएम शिमला पर, और अब राजेश ठाकुर और साथियों की आवाज़ में सुनिए नीलिमा।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर सुन रहे हैं आप हिमाचली लोक संगीत, और आखिर में मामराज और साथियों की आवाज़ में ये कार्यक्रम का गीत सुनिए।

0: और अब आप सुन पाएंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षा

समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने

0: शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Mr. Modi stated this while chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees across the railways, power and road sectors covering 9 states. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Gala on the Sikkim police during Alankaran Parade, held in Gangtok.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
1: होगा। Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the Ullas Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. India and China reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. The ministry said the Indian side stressed on early meeting of the next expert-level mechanism on transborder rivers. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah today held a breakfast meeting with cabinet colleagues at his residence in Bengaluru amid reports of a possible leadership change in the state. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, who is reportedly being considered for the top post, was also present at the meeting. Cabinet ministers who attended the meeting said they would abide

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से महिलाएं सुनेंगी अपना दैनिक कार्यक्रम महिला सम्मेलन। आप हमारा ये कार्यक्रम FM शिमला 103.7 में

0: प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहें। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहें। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, तो इसलिए सावधान रहें। तो आगाज हो चुका है हमारे आज के कार्यक्रम महिला सम्मेलन का, और आज के इस कार्यक्रम में हम रहेंगे आपके साथ रेणु कश्यप और
1: मधु शर्मा। आप सभी को हमारा
0: नमस्कार। तो देखिए मधु, जो मौसम चल रहा है तो गर्मियां हैं, नौ तपा चल रहा है
1: जी जी।
0: और खास ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, जब दिन में बहुत धूप पड़ती है उस टाइम अगर ना ही निकलें तो बेहतर है। अगर आपको नहीं ज़रूरत है,
1: ज़रूरत है जी,
0: तो बिल्कुल भी ना निकलें। और अगर निकल रहे हैं तो भाई छाता अपने साथ रखें,
1: ज़रूर बिल्कुल, और साथ में एक पानी की बॉटल ज़रूर अपने पास रखें। वैसे तो देखिए रेणु, हमारी बहनों को बहुत काम होते हैं, स्कूल से बच्चों को लाना है, या कोई अगर तो नौकरी कर रही हैं या कोई बाहर काम कर रही हैं, फिर तो बात अलग है कि सारा दिन ऑफिस में बैठना। लेकिन अगर आप दिन में बाजार निकल रही हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल से ला रही हैं, तो पानी की बोतल और एक छाता आप जरूर रखें।
0: बिल्कुल रखें, और खास ख्याल रखें कि भाई जैसे छांव जहां पर है वहां पर ही आप वहां से चलें, क्योंकि बहुत तेज धूप में ना बहुत काफी सारी जो लेडीज हैं उनको कई बार ना चक्कर भी आ जाता है, और भारी दोपहर ही होती है कई बार। बच्चों को जो छुट्टी का समय होता है वो भारी दोपहर का होता है, और उस वक्त थोड़ा सा ये रहता है कि भाई कोई भी बीमार पड़ सकता है ना। और जाना तो देखिए आपको हर रोज ही है, बच्चों को लेने सुबह छोड़ने जाना है, शाम दिन में लेने जाना है, तो जब आप स्वस्थ रहेंगी, आप अपना ख्याल रखेंगी, तभी आप अपने जो बच्चे हैं और जो आपके घर परिवार के लोग हैं उनका भी ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल रेनू, देखिए ना, मौसम कहते हैं ना कि ऋतुएं तो सभी अच्छी होती है, लेकिन गर्मी की अगर हम बात करें, वैसे तो आज का मौसम जो है वो बड़ा अच्छा सुहाना सा लगा था कि सुबह बिल्कुल बादल हल्के हल्के दिखे थे, तो अच्छा लगता है कि एकदम अगर बारिश हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सारे के सारे मौसम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तभी होते हैं जब आप उनको अच्छे से उसका पालन कर सके। जैसे सर्दियों में हम हमेशा आपसे यही बात करते हैं कि आपको किस तरह से जो है अपने शरीर को ढकना है और गर्म रहना है, गर्म चीज़ें खानी हैं। इसी तरह से गर्मियों में भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो हम यही कहेंगे कि भी पानी पीते रहना ज़रूरी है।
0: क्योंकि क्या होता है कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक तो पसीना आता है, पसीने से हमारे अंदर पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, तो आप क्या करें कि एक तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और जैसे अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी लग रही है तो आप नींबू पानी बनाकर भी पी सकते हैं, और जैसे जो फल हैं आजकल जो मौसमी फल है उनका भी आप प्रयोग करेंगी, सेवन करेंगी, तो भी जो ये लू लगना है या फिर जो गर्मी है उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो मधु आगे बहनों को ये भी बता देते हैं कि 28 मई आज बकरी ईद, जिसे कि हम ईद उल अजहा भी कहते हैं, का त्यौहार मनाया जा रहा है, और इसके महत्व की बात करें तो ये त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति दिखाए गए समर्पण और उनके द्वारा दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, और आपको बता दें बहनों कि इसी दिन सुबह की विशेष नमाज जो है वो ईदगाह या मस्जिदों में अदा की जाती है। लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं और मीठे पकवान बनाते हैं,
0: और इसे त्याग और बलिदान का त्यौहार भी कहा जा सकता है।

0: कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और मस्तिष्क वास करता है, और हर उम्र में स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बच्चे के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सभी को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल हमेशा ज़रूर रखना चाहिए।
1: देखिए, वैसे तो सभी अपने जो स्वच्छता है उसका ख्याल रखते हैं
0: जी,
1: लेकिन कुछ ऐसा समय भी आता है हमारी बेटियों और महिलाओं के जिंदगी में
0: जी,
1: जब उन्हें अपने खान पान और अपनी स्वच्छता का खास ख्याल रखना होता है।
0: बिल्कुल,
1: और बहनों को बता देते हैं कि ये वक्त होता है महावारी का समय।
0: और आज हम बात करेंगे मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में, क्योंकि देखिए हर वर्ष 28 मई को जो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, और बहनों ये दिवस जो है उन चुनौतियों को उजागर करता है जिनका सामना दुनिया भर में विशेषकर विकासशील क्षेत्रों में महिलाओं को और हमारी किशोरियों को करना पड़ता है।
1: देखिए, किशोरियों को महामारी के वैज्ञानिक कारणों और सुरक्षित प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना ताकि उन्हें स्कूल छोड़ने जैसे नुकसान ना उठाने पड़े। स्कूलों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी, साबुन और सुरक्षित शौचालय की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना। तो मधु, ये चीज़ तो कई बार देखा जाता है कि स्कूल छोड़ने की नौबत भी कई बार जो बच्चियां हैं उनको आ जाती है
0: ना? बिल्कुल,
1: तो ये चीज़ ना हो, इसी के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक किया जाए बच्चों को, महिलाओं को, ताकि वो इस समय में अपनी जो स्वच्छता है उसका भी ख्याल रखें। और जहाँ पर वो कार्यस्थल है, चाहे वो बच्चे पढ़ने जाती हैं, चाहे जो महिलाएँ हैं किसी ऑफिस में काम करने जाती हैं, वहाँ पर भी इस स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाए।
0: बिल्कुल, देखिए बहनों, अस्वच्छता के कारण प्रजनन पथ संक्रमण यानी RTI और मूत्र मार्ग संक्रमण यानी UTI का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साफ सफाई की कमी से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जैसी जो चीज़ें हैं ये हो सकती हैं, और आगे चलकर यही चीज़ें गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं। इसलिए इन ऐसी चीज़ों से हमें बहुत सावधानी रखनी होगी और स्वास्थ्य समस्याओं का जो है हमें अपने ध्यान रखना होगा कि हमें आगे
1: जी,
0: क्योंकि अभी तो हम ये चीज़ें कर लेते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में फिर हमें आगे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें
1: भी आ जाती हैं जी। तो इसका देखिए एक उपाय तो ये भी है कि जो लंबे समय तक क्या है कि अगर गंदे कपड़े या एक ही

0: पैड का इस्तेमाल करते हैं तो गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो उपाय क्या है कि भैया आपने क्या करना है कि जो गंदे कपड़े या फिर एक ही पैड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा समय तक नहीं करना
1: करना है।
0: है।
1: बिल्कुल
0: और जैसे ये एक डराने वाली बात नहीं है मधु, ये है कि हम जितनी जागरूकता रखेंगे,
1: बिल्कुल
0: जितनी सावधानी बरतेंगे, उतना ही हम इन चीज़ों से बच करके रहेंगे। जो स्वच्छता है, जितना हम स्वच्छता का ख्याल रखेंगे ना, उतने ही हम साफ सुथरे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जो स्वास्थ्य है ना हमारा, वो हमारी स्वच्छता पर निर्भर करता है। और जो ये खास दिन होते हैं, इनमें तभी तो हम कहते हैं कि खास ख्याल रखने की और खास सावधानियां और जो
1: खास खान
0: साफ,
1: पान है
0: हाँ,
1: ना।
0: खान पान भी और साफ सफाई का भी ख्याल
1: बिल्कुल
0: रखना पड़ता है।
1: जी,
0: और भी बहुत सारी बातें बहनों से करेंगे, है ना।
1: बिल्कुल
0: पहले गीत सुनवाते हैं
1: जी।

0: फ़ायदा होता है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने पहले बात की ना कि अगर साफ सफाई नहीं रखते हैं तो हमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है ना। लेकिन जो साफ और सुरक्षित उत्पादों का उपयोग करने से संपूर्ण यौन और प्रजनन स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है, जिससे भविष्य में जो मातृत्व स्वास्थ्य है और प्रजनन क्षमता है उस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही बहनों आपको बता दें कि मासिक धर्म के जो दौरान रक्त के संपर्क में आने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे क्या होता है कई बार दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, खुजली होनी शुरू हो जाती है और जो स्किन पर जो है छोटे ऐसे छोटे छोटे चकते या रैशेस हम कह सकते हैं ये हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक अगर आप पैड में ही एक ही पैड लगा के रखते हैं तो इससे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और नियमित रूप से पैड बदलने से इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है।
0: देखिए स्वच्छता और सही प्रबंधन जैसे सैनिटरी पैड या फिर जो मेनस्ट्रुअल कप है उसका उपयोग लड़कियों और महिलाओं को आत्मविश्वास भी देता है।
1: बिल्कुल।
0: इससे वे बिना किसी डर या शर्म से स्कूल कॉलेज या फिर कार्यस्थल पर जा सकती हैं जिससे कि उनकी शिक्षा और कार्य क्षमता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रभावित नहीं होती है। एक आत्मविश्वास होता है ना जब, तब हम कोई भी कार्य है वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
1: मतलब एक दिमाग में चलता रहता है, नहीं तो कि एक
0: डर,
1: हाँ डर सा लगा रहता है। और कई बार तो कई हमारे जो बहनें हैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है, पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो अगर कुछ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि हम छोटी छोटी बातें अपनी बहनों से बता रहे हैं कि आप इन दौरान किस तरह से अपना ख्याल रख सकती हैं, स्वच्छता का ख्याल रख सकती हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए सबसे पहले जो बात आती है खान पान, क्योंकि हर एक बीमारी का जो कारण है खान पान भी होता है और इलाज
1: आजकल के खान दौर में है ना। आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में जिस तरह का हमारा खान पान हो गया है, ये अब हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो
0: समय के अनुसार,
1: हाँ और प्योर भी हम नहीं कह सकते, सब चीज़ें हमें प्योर मिल रही है, लेकिन फिर भी जितना कोशिश हो सके आप आहार पर अपने ध्यान दें उन खास दिनों में।
0: बिल्कुल। देखिए इस दौरान क्या है कि आपको पौष्टिक आहार लेना है जिसमें कि आयरन हो और विटामिन ई से भरपूर हो और पर्याप्त आपको आराम की भी ज़रूरत होती है। जैसे अभी मधु ने कहा कि कुछ बहनों को क्या होता है कि इस समय में बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, कुछ
1: दर्द होती है ना,
0: पीठ दर्द होती है, कोई भी काम करने का मन ना करना क्योंकि कर भी नहीं पाते हैं। तो इस समय क्या है, अगर आप आराम करते हैं तो भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है।
1: और दूसरी बात बहनों, जो हमने पहले भी कही कि एक सैनिटरी पैड को एक जो 4-5 घंटे से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं रखना है, हम तो ये कहेंगे कि 2-3 घंटों में, वो उस पर डिपेंड करा कि किस तरह का फ्लो है। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो आप 1-2 घंटे में आप चेंज कर सकती हैं, नहीं तो आप 4-5 घंटे से ज़्यादा उसे बिल्कुल ना रखें, भले ही रक्त स्राव जो है वो कम हो, भारी रक्त स्राव में इसे और भी आपको जल्दी, जैसा हम कह रहे हैं, कि बदलना ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। और देखिए ये तो बात हुई कि हमने इसका कैसे उपयोग किया, लेकिन जो पैड है उसका सही निपटारा होना भी ज़रूरी है
1: और सबसे बड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी है
0: हमारी जिम्मेदारी है। और इस्तेमाल किए गए पैड को कभी भी देखिए शौचालय में नहीं डालना चाहिए और इसे अखबार या कागज़ में लपेट कर ही कूड़ेदान में आपको डालना चाहिए या फिर आप उसे ज़मीन में भी गाड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल। मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखना बेहतर है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, संक्रमण की रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए भी।
0: बिल्कुल।

0: मधु, मुझे लगता है कि जो बहनें हैं कहीं गीतों में ना खो गई हों,
1: बिल्कुल
0: तो उन्हें वापस लेकर के आते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि माहवारी के दौरान जो साफ सफाई रखी जानी चाहिए, और साफ सफाई का

0: मैं हूँ आकाशवाणी, भारत की धड़कनों की साक्षी, सुनहरी यादों की रचना और भावों का एक अनंत आलेख।
1: भारत की ध्वनि तरंगों पर पिछले 9 दशकों से जो नाम गूंजता रहा है वो है आकाशवाणी। 23 जुलाई 1927 को एक छोटे से रेडियो स्टेशन से शुरू हुआ ये सफर आज 90 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पूरी कर चुका है। ये सिर्फ एक प्रसारण संस्था नहीं बल्कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना का प्रतिबिंब भी रहा है।
0: अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में तो आकाशवाणी का जन्म भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में हुआ था जब बॉम्बे यानी मुंबई में पहला रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और स्वतंत्रता के बाद इसे हिंदी में नया नाम आकाशवाणी दिया गया, जिसका अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी।
1: बिल्कुल, और बहनों, आकाशवाणी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के डिजिटल युग तक हर दौर में समाज को दिशा दी। विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये देशवासियों को समाचार और विचारों से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बना और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण

0: हो गई।
1: आकाशवाणी ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज के डिजिटल युग तक हर मोड़ पर देश को एकता के सूत्र में बांधा है। आकाशवाणी ने संगीत, नाटक, कविता और लोक परंपराओं को सहेजने और प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शास्त्रीय और लोक कलाकारों का पहला प्रसारण आकाशवाणी से ही हुआ।
0: भारत की भाषाई विविधता को सहेजते हुए आकाशवाणी आज 23 भाषाओं और बहुत सारी जो बोलियां हैं उसमें कार्यक्रम प्रसारित करता है। ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों से लेकर विश्वविद्यालय प्रसारण तक आकाशवाणी ने शिक्षा को भी दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया है। और इसके साथ ही जब टीवी और इंटरनेट नहीं थे बहनों, तब लोगों के लिए सही और भरोसेमंद समाचार का स्रोत सिर्फ एक ही था और वो था आकाशवाणी।
1: संकट के समय जैसे प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय आपदा के दौरान भी आकाशवाणी जनता को सूचित और निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और विविधताओं का सजीव दस्तावेज है। इसके कार्यक्रमों में आज भी भारतीय संगीत, ज्ञानवर्धक चर्चाएं, कृषि, स्वास्थ्य संबंधी सलाह और समाचारों की विश्वसनीय प्रस्तुति शामिल है। कोरोना काल में भी जब सब थमा हुआ था, तब आकाशवाणी लगातार लोगों को जानकारी, हिम्मत और मनोरंजन देता रहा।
0: आज बहनों, जब दुनिया पॉडकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की ओर बढ़ रही है, आकाशवाणी ने भी समय स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक किया है। अब आप स्मार्टफोन ऐप्स और वेबसाइट के माध्यम से देश दुनिया में कहीं भी आकाशवाणी सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी के कहीं भी किसी भी क्षेत्र के जो क्षेत्रीय कार्यक्रम है वो आप अपने ऐप के माध्यम से कहीं पर भी सुन सकते हैं। और रेडियो की दुनिया अद्भुत है। शहरों में ट्रैफिक से जूझते हुए काम पर आते जाते लोग हों या घर पर मौजूद गृहिणियाँ या फिर बुजुर्ग, हॉस्टल के छात्र हों, दूरदराज के इलाकों, जंगलों में रहने वाले लोग, रेडियो सबका समय बांटता है, सबका अकेलापन दूर करता है। युवाओं का कार्यक्रम हो या महिलाओं और बच्चों का, सैनिकों के लिए हो या फिर क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो, तो आज भी लोग आकाशवाणी के साथ यूं ही जुड़े रहते हैं।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी केवल एक प्रसारण सेवा नहीं है बहनों, ये भारत की आत्मा की आवाज़ है। 90 वर्षों की ये यात्रा एक ऐसी संस्था की गाथा है जिसने हर भारतीय के जीवन को कभी ना कभी जरूर छुआ है।
1: ये कविता बोलती है, संगीत बहता है यहाँ पर और विचार गूंजते हैं। यहाँ गांव भी जुड़ता है और महानगर भी। यहाँ अतीत की झलक भी है और भविष्य की तैयारियाँ भी
0: जी।
1: और आज जब आकाशवाणी 90 वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो ये समय है उसे सलाम करने का, उस आवाज़ को जिसने देश को जोड़कर रखा और जो अब भी हर सुबह नई उम्मीद जगाती है। आकाशवाणी, आवाज़ जो भारत की आत्मा से गूंजती है।

Hi, handsome. यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा,

हाय प्रिंस, अकेले हो? शादी नहीं की? प्यार भी नहीं? इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

0: तो देखिए आज है वीरवार और बहनों को इंतज़ार रहता है खाना खजाना का। और देखिए जब इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है तो धूप से राहत के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आज उसी पर बात करेंगे।
1: बिल्कुल बहनों, देखिए अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा आप गर्मी है और बहुत ज़्यादा आपके शरीर में गर्मी है तो आप क्या कर सकती हैं कि इसका मतलब है कि आप जो है वो लू की चपेट में आ चुकी है। इसके लिए आप क्या करें कि जौ को भून कर बनाया गया सत्तू पानी में घोल कर अगर आप पीती हैं तो ये आपको जो है वो लू से बचाव में मदद करेगा।
0: बिल्कुल, देखिए जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, मधुमेह के रोगी हैं या फिर हृदय रोग से पीड़ित हैं और शरीर से दुर्बल हैं, उन लोगों को ना धूप में जाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनको ना बहुत जल्दी जो लू है वो लग सकती है। तो गर्मी
1: बिल्कुल
0: से भी बचना है, और सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि कभी भी खाली पेट आपने नहीं रहना है, और खाली पेट घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है।
1: बिल्कुल, इसके साथ साथ ही बहनों ध्यान रखिए, पसीना में जब गर्मी में पसीना बहुत आता है और उस पर एकदम से जैसे घर पहुंचते एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं हम लोग, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको रूम टेम्परेचर वाला पानी ही पीना है। और साथ साथ में बहनों बेल का शरबत, नींबू और नमक का शरबत, चीनी की शिकंजी, कच्चे प्याज का सेवन, कच्चे आम का पन्ना जो है वो इस गर्मी में बहुत ज़्यादा हितकर रहता है।
0: बिल्कुल, देखिए आजकल क्योंकि कच्चे आम मिल रहे हैं तो कच्चे आम को आप भूनकर मत लें और पानी में मिला करके पिए तो भी इससे भी आपको राहत मिलती। आम तो देखिए जब जो मौसमी फल है, हम पहले भी कह रहे थे।

0: का सेवन आप जरूर करते रहें।
1: बिल्कुल, और ऐसे मौसम में कई बार होता है कि इमली भी हमें इसमें बहुत राहत देती है। इमली का गुदा पानी में मत कर पिलाने से उल्टी और गर्मी के कारण होने वाले जो बुखार होते हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है हमें लाभ मिलता है।
0: जी बिल्कुल, तो छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रख करके हम गर्मी से बच सकते हैं।

महिलाएं सुन रही थी अपना दैनिक कार्यक्रम महिला सम्मेलन। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।

0: डूबने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
1: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the education minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले।
4: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली। दिस इज अ प्रोविजन अंडर द ओएसएम सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सीबीएसई हैज इंप्लीमेंटेड दिस सिस्टम सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड
1: The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates, whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month, will be released soon. Karnataka

0: तुम हो, हो तुम हो।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और एंजॉय कर रहे हैं एक के बाद एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल नंबर्स विद मी भानु प्रिया वर्मा।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य।

0: की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। दो बज चुके हैं और ये वक्त है प्रोग्राम सबरंग का। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं संगीत के विविध रंग। तो सबसे पहले ये रंग है खूबसूरत गज़ल का, आवाज़ जगजीत सिंह की है।

आज मैं वक्त के साथ साथ चल रहा हूँ, जैसे जैसे काम मिलता गया और गज़लें मकबूल होती गई वैसे वैसे आपको सुना रहा हूँ।

0: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सबरंग, और सबरंग में ये रंग आपने सुना सुफियाना 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। सबरंग प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा इस एक मैसेज के बाद।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार, विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: फिलहाल आज सब रंग में इतना ही। अब आप सुन पाएंगे समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार

0: में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धरमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
1: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धरमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धरमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।

0: देश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक

0: धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में PV सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर। 2:30 हुए हैं और ये वक्त है आपके अपने जाने पहचाने प्रोग्राम शिखरों के स्वर का। आगाज कर रहे हैं इस कार्यक्रम का अंकुश संधल की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ।

0: फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाए।

0: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर, और अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये लोकगीत सरिता राणा की आवाज में।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो 3 बजे तक चला। कुछ मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदान जारी है, क्योंकि यहां मतदान का समय खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की लाइनें लगी हुई हैं। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 1,276 पंचायतों में वोट डाले गए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और आज रात तक सभी नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में कुल 17,30,030 मतदाता हैं। इसमें सबसे अधिक करीब 4,00,000 मतदाता कांगड़ा जिला से हैं, जबकि सबसे कम 8,875 मतदाता लाहौल स्पीति में हैं। इस बीच 30 मई को तीसरे और अंतिम चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज सुबह 3 बजे सक्रिय चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर सकेंगे। तीनों चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। इस बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर उम्रदराज मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही।
2: मेरा नाम आरती है, मैं गांव मालोवाला की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रहने वाली हूं। आज मैंने पंचायती चुनाव में अपना पहला वोट दिया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। आप सभी भी अपना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
3: मेरा नाम तपस्या है, मैं गांव बनकला सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूं। आज मैंने अपना अधिकार पूरा किया है वोट डालकर, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अपना।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा ये पहल राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में जाकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान लोगों ने अमन, शांति और खुशहाली की दुआ भी मांगी। राजधानी शिमला में ईद की मुख्य नमाज ईदगाह मैदान में अदा की गई। चंबा में

भी ऐतिहासिक चौगान नंबर 5 में ईद की नमाज अता की गई। इस मौके पर जहां छोटे छोटे बच्चे नई पोशाकों में उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ नमाज में भाग लिया। कुल्लू जिला की लग घाटी की बढ़ई बाग बीच सड़क पर आज एक टैक्सी वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद शिरड़ मेला देखने जा रहे थे। घायलों को कुल्लू के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य में आज कुछ स्थानों पर सुबह से ही हल्के बादल छाए रहने से तापमान में कुछ कमी आई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आठन ने घायल हो गए। ये लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद शिरड मेला देखने जा रहे थे। घायलों को कुल्लू के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य में आज कुछ स्थानों पर सुबह से ही हल्के बादल छाए रहने से तापमान में कुछ कमी आई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए जिसका विषय है भारत की डिजिटल जनगणना 2027, पारदर्शिता, तकनीक और जनभागीदारी का नया अध्याय। वाचक स्वर है शशि चौहान का।
0: भारत की जनगणना केवल जनसंख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये देश की सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान है। अब भारत की आगामी जनगणना 2027 एक नए और आधुनिक स्वरूप में सामने आ रही है। इस बार जनगणना को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में इस ऐतिहासिक अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना प्रक्रिया को 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहला चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना का होगा, जबकि दूसरा चरण वास्तविक जनगणना का होगा। इस नई व्यवस्था का सबसे अहम पहलू यह है कि नागरिक अब केवल सरकारी अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि वे खुद भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण और आवास गणना हिमाचल प्रदेश में 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान घरों की स्थिति, निर्माण सामग्री, बुनियादी सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान का उपयोग क्या है, छत, दीवार और फर्श किस सामग्री से बने हैं, पीने के पानी का स्रोत क्या है, बिजली, रसोई गैस और शौचालय की उपलब्धता जैसी जानकारियां इसमें शामिल रहेंगी। इसके अलावा टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और परिवहन साधनों जैसी सुविधाओं से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। इस बार की जनगणना का सबसे बड़ा नवाचार स्वगणना सुविधा है। आम नागरिक अब सुरक्षित ऑनलाइन के माध्यम से स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी भर सकेंगे। प्रदेश में ये सुविधा 1 जून से 15 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी। लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें एक स्वगणना आईडी नंबर प्राप्त होगा, जिसे बाद में घर घर आने वाले प्रगणक को दिखाना होगा। यह व्यवस्था नागरिकों और प्रशासन दोनों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। जब 16 जून से 15 जुलाई के बीच प्रगणक घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे, तब स्वगणना आईडी देने पर नागरिकों द्वारा पहले से दर्ज जानकारी स्वतः प्रगणक के मोबाइल ऐप में दिखाई जाएगी। इससे समय की बचत होगी, दोबारा जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गलतियों की संभावना भी कम होगी। डिजिटल तकनीक के उपयोग से जनगणना प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार प्रगणक पारंपरिक कागजी फॉर्म लेकर नहीं चलेंगे, वे एक आधुनिक HLO मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे घर घर जाकर डेटा एकत्रित करेंगे। इस ऐप के जरिए जानकारी वास्तविक समय में दर्ज होगी। इससे डेटा संग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और मानवीय त्रुटियों में कमी आएगी। इसके साथ ही जनगणना की पूरी प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS पोर्टल भी तैयार किया गया है। ये पोर्टल अधिकारियों को प्रशिक्षण, संसाधन प्रबंधन, प्रगति की निगरानी और लॉजिस्टिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करेगा। यानी अब जनगणना केवल आंकड़ों के संकलन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक तकनीक संचालित और सुव्यवस्थित प्रशासनिक मॉडल के रूप में सामने आएगी। जनगणना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू गोपनीयता भी है। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी का क्या होगा। इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान दी गई सभी जानकारियां जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। साथ ही सही जानकारी देना नागरिकों की कानूनी

0: जिम्मेदारी भी है। हिमाचल प्रदेश में इस बार हर नागरिक को अपनी और अपने परिवार की गणना में सीधे भागीदार का अवसर मिलेगा। इससे न केवल जनगणना कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि नागरिकों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित होगी। डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रदेशवासियों को सीधे अपनी जानकारी अपलोड करने का अवसर देना प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वास्तव में जनगणना 2027 केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है, यह डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 3:10 हुए हैं, ये वक्त है आपके अपने जाने पहचाने प्रोग्राम का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड हिट्स।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट्स, और ये सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया इंतकाम मूवी से लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप एंजॉय कर पाएंगे 3:30 तक। फिलहाल प्रोग्राम का नेक्स्ट ट्रैक हम आपके लिए लेकर आए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आंसू बन गए फूल से। बैठ जाओ।

0: सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
4: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
3: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
4: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। प्रोग्राम चल रहा है ओल्ड हिट्स भानुप्रिया वर्मा के साथ। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, खूबसूरती ना सूरत में है ना लिबास में, ये निगाहें ही हैं जिसे चाहे उसे हसीं कर दें।

मैं अक्सर कहती हूँ यहाँ पर कि मोहब्बत वो एहसास है जिसे लफ्ज़ों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब तक इंसान है, इंसानियत है, ये दिल है, मोहब्बत है और जज्बात है, ये सॉन्ग्स यूं ही आपके और हमारे दिल के करीब रहेंगे।

नमस्कार युवा साथियों, आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला। अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और आज बातें होंगी उस पहचान की जो शायद दुनिया से पहले हमें खुद खोजनी होती है। दोस्तों, भीड़ में चलना आसान है, लेकिन खुद को पहचानना सबसे मुश्किल। कई बार हम दूसरों जैसा बनने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम खुद कौन हैं। तो अगले कुछ पल होंगे सिर्फ आपके नाम, आपके सपनों के नाम और उस इंसान के नाम जो आपके अंदर छुपा बैठा है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, मैं आखिर हूँ कौन? क्योंकि दुनिया हमें हर दिन बताती रहती है कि हमें क्या बनना चाहिए, लेकिन दिल हमेशा पूछता है, मैं क्या बनना चाहता हूँ? किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को सिंगर, और कुछ लोग अभी भी खुद को ढूंढ रहे हैं। और सच कहूँ, खुद को ढूंढना गलत नहीं, गलत है खुद को खो देना। दो पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगी, भीड़ में चलकर क्या मिलेगा, रास्ता तो अपना बनाना होगा, पहचान अगर सच में चाहिए तो पहले खुद को जानना होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों आज का यूथ सबसे ज़्यादा कंपैरिजन से परेशान है। उसके मार्क्स ज़्यादा, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा, उसकी लाइफ बेहतर। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। हर किसी का टाइम अलग होता है। कोई जल्दी जीतता है, कोई देर से, लेकिन जीतता वही है जो खुद पर काम करना नहीं छोड़ता। अगर आप खुद को हर दिन बेहतर बना रहे हैं तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता है, लेकिन सेल्फ बिलीफ इंसान को चमका देता है। तो सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की माय फ्रेंड्स। और अब वक्त है एक और गीत का।

दोस्तों लोग टैलेंटेड होते हुए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो, अगर मजाक बन गया तो। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जो लोग कोशिश नहीं करते वो ज़िंदगी भर सोचते रह जाते हैं। और ज़िंदगी में गलती करना गलत नहीं, लेकिन कोशिश ना करना गलत है। फ्रेंड्स, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो स्टार्ट करो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो पहला वीडियो डालो, क्योंकि पहचान सोचने से नहीं करने से बनती है। तो आप सिर्फ पहला कदम लीजिए, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अब बढ़ते हैं अगले म्यूज़िक ट्रैक की ओर।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

दोस्तों, सफलता वो नहीं जो सिर्फ दुनिया को दिखे। असल सफलता वो है जब रात को आप खुद से कह सको, मैंने आज खुद के लिए कुछ किया। अपनी पहचान बनाना एक दिन का काम नहीं, ये हर दिन खुद को बेहतर बनाने का सफ़र है। और याद रखिए, दूसरों की कॉपी बनकर आप भीड़ में खो जाओगे, लेकिन खुद बनकर दुनिया में अलग पहचान बनाओगे। फ्रेंड्स, अपने आप को कमज़ोर समझना छोड़ दो, अपने सपनों को छोटा समझना छोड़ दो। जिस दिन स्वयं पर भरोसा आ गया, उस दिन दुनिया भी आपको पहचान जाएगी। और अब सुनेंगे कार्यक्रम का आखिरी गीत।

तो फ्रेंड्स, आज के सफ़र में अगर आपने खुद को थोड़ा भी महसूस किया हो तो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जीत है। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, खुद से प्यार करिए और ज़िंदगी में कभी भी ये मत भूलिए, आप जैसे भी हैं खास हैं। अब मैं आपकी रेडियो

0: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुँचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफ़र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है। अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं,

जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है, और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ, और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।

0: में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो सीआरपीएफ को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि सीआरपीएफ सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी, होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070। इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए ज़रूर।

0: हमें क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था, वर्दी की तरफ एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था, बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोज़गार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं, तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए, तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF?
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता
1: है? इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है, बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं, आप असिस्टेंट कमांडर

0: वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: ये मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफ कोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई दूरभाष फ़ोन के माध्यम से, लोगों ने बताया तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मेरे बैंक में सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
1: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुँचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है बहुत खुशी के बहुत है। मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफ़ी खुश था।
1: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज़्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
0: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व तो एक डिफरेंट, एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: अपने
0: उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकल्केट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी, तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना

0: शुरू कर दीजिए।
1: जी
0: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में। शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ FM रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की FM रेनबो पर हमें। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है, और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज़ ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान के पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो CRPF उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो CRPF के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। CRPF एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है, और इसका रिकग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। CRPF को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। CRPF को 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, CRPF के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि CRPF को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का, जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती हैं।
0: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं CRPF ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे, और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए CRPF में हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है, और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया, और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है,

0: वो उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारी गेम है और ये सारी गेम में आज भी मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बंध जाती होगी, बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की
0: खेल की
1: भावना।
0: भावना
1: वाह,
0: जी,
1: क्या बात है।
0: निसंदेह।
1: तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन CRPF में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको CRPF ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो CRPF का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा CRPF की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और CRPF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें CRPF की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और CRPF ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा

0: श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफ़र डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस्ड रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब ही रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है और लोकल, जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: क्या
0: तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया। तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या आपको जिम्मेदारियाँ दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं। तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी, एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
0: जी,
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज़्यादा स्थापित कर सके? तो क्या आपकी किसी, ये कहूँगी कि जो आपने सोचा हुआ था, आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने, उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे, क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ, जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपने श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है। चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्र

0: में काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे। तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह ये होता था। एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और सीआरपीएफ भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के। सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है। आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
0: वाह, क्या बात है। जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। कैसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एक ना बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड, तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी।
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
0: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत। बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत से आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं, ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ,

0: था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रैवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूँगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूँगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो एक, मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, कोई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
0: हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो FM रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो बिना का गीत माला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या हाँ। गोल्डन वॉइस थी उनकी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी यादें थी, और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं FM रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
0: बिल्कुल जी। और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो CRPF ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने।
0: बिल्कुल।
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने

0: देश अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को ज़रूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
0: निसंदेह।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूँगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
0: धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। आइए सुनते हैं मंडियाली गीत। सोनिका शर्मा और कल्पना की आवाजों में आपको सुना रहे हैं ये गीत।

मंडियाली गीत आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ। ज्वाला प्रसाद शर्मा और अक्षर सिंह परमार की आवाज़ों में आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और आकाशवाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हिमाचली बोले के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पंगवाली कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

और लोग आकाशवाणी शिमले क्या बोल बेल दी 5:20 ता महंगे रस्ते घिन कही रहते हैं अपू मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुने जी पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले से भंजन महेंद्र कुमार तरफा बेल दी नमस्ते जी तो सुनने वाले हाजरा अखबार फिर तुम अपू मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम घिन करियो महेंद्र कुमार ता सो बिहार के यहाँ पहले तो जतरे भी बिहार पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुन नगो रिश्ते से आकाशवाणी शिमले पुट सुन नगो एफ एम शिमले पुट सुन नगो रिश्ते तेने से बिहार के जैसे हों पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम अंतर जैसे स्वागत करता सुन वाले हैं जे पंगवाड़ी बोली जे कार्यक्रम ये तैसे दिहाड़ी कहीं गल करूँ दोनों गल करूँ बारे गल करूँ ता समारे ता बसते ता तठा शांचरे ता सात टाइम ही गल करूँ तो बिल दी 5:20 क्या 5:50 कर है ना 30 आधा घंटा जैसे हैं सुनने वाले पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम जैसे सुन सकते आकाशवाणी शिमले जे 7.7 AIR FM शिमले जे फ्रीक्वेंसी 104.7 MHz है ना तेसपुट जैसे हैं पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम हैं सुनने वाले सुन सकते अस आपू सुनने वाले जैसे जानकारी देते कुछ पैंगे घाटी खास जगह है ना धने बारे है ना देशे प्रदेशे खबरें भी सुनाते गीती कहीं गल करें तो बधिया बधिया गीत जे से ताड़ी करी थेरे बुते तेन भी आपू सुनने वाले सुनाते आज मुंडा खो खलाने तख्त पैंगे घाटी अंतर जे हैं पर्यटन स्थल हस्ते जे जगह स्थित तेनी बारे तठा ब्यागे जैसे सुबह की सेरे बारे जैसे डकबो खलाने हस्ती सुबह क्या पहले आख में बध्या जनु जैसे गीत तैयार थी रिस्तु ऐस गीत सुनते फिर लाता हूँ तुझे डकबो ता सुने जैसे गीत

जी एत्रु बैद्य अजनु गीत से सह शून वाले शुणु राज प्रभाकरे गल अंतर अभी मुझे डकवो क्लानी स्थिति से अस्थि पैंगे घाटे अंतर जे पर्यटन जे जगह अस्थि तहनी बारे है न गल करें सुराल भटोरी हुनान भटोरी है ना ये कुमार पुरमार भटोरी अपू शेचू नाक नार गेंत चसक भटोरी लुटवान भटोरी जत्री भी है ना पैंगे जे से दूर है ना भटोरी अस्थि हेने बैरी जगह अस्थि अब नहीं गल किस लग रहा कन के आखता है हरियाणा जैसे होरे ग्राम बुन बुन है ना सब ता जे भटौरी अस्थी है दूरी अस्थी है ना जे भी तैड़ी पूछते भटौरिया हेन घेते तठा खाड़ी से धारे जैसे शुरू भी घेती है ना जोते जैसे लागी घेते ता जे भी मैन है ना भटौरिया घेते से अख्त हेने बैड़ी जे जगह अस्थी है ना पदरी धारे कुड़ी जो थी नू लगतु कि आज जैसे आसे अमरे छुई छन है ना है नी हरैल नी बैड़ी नी जगह अस्थी कि जे इरो रे क्या भी अबे जे घुमनार फुनार होते तने है ना जगह जगह हिरो होती तने पता होता पर अगर अखबार जे पैंगे घेले तठनी जे कुदरती जे तने पानी हती नस्तु ताजी जे हवा हती नस्ती है ना शांति जे भूनी स्थिति तने जगह अंतर कि सजे से है तेरे ही है हाँ थोड़ी जनी तफलीक जरूर भूनी स्थिति कि तने जगह पूजो थोड़ी टाइम लगता है ना साते हाओ खीने पीने जैसे चीज़ें तैतरे दूर भूते न पर मैन फिर भी अभी जैसे जागृति कन लग गए रिश्ते है ना तैठनी जे मैन रस्ते जने अभी जैसे ना कम काज खोलो रस्ता कुड़ी कुड़ी तहने जे अगर बैरते जे घुमनार गए तहने जैसे पुकनार प्यूर जैसे आदर खादर करते वैसे तो हूँ एक्चुअली गल करूँ कि प्यूरे पाएंगे जैसे रते बातें खुल गए रिश्ती है ना सच्चे जोत बते सास पास जैसा है ना सच्चे जोत भी खुल गए रिश्तु धुरियाँ मनाड़ी थे घेलते धुरियाँ भी बातें खुली रिश्ती ता प्यूरी पाएंगे जैसे चली नीली जैसे भूंगेरी है ना सुभियाँ किनार जैसे हरियाली हरियाली अस्थी ग्रां क्या जैसे धारियाँ गरमैनों जैसे बैगे जैसे जत्री जिमी थी जल जिमी से बही गई रिश्ती नुदनु जलनु कूले धूले रहनी है ना जहने शेरवान बोथियाँ ता तैने जगहियाँ तय चल सी हर जैसे नीला रस्ती है ना है ने हेते जैसे जे नज़ारे जैसे बने गए ता जे भी है ना घूमने घूमने अंतर शौक था ते जगह है नहीं चाहते कि कोड़ी कहनी वस्तु तो तहने दिजे स्वयं बता कि अचकेली हैं पैंगे किनार जैसे घेले तो हैने बैठ जगह अस्थी है ना रते बाते खुल गए रिश्ती ता जे भी घेता है ना तहने बोतू कि दोपहर कोई बात थे कोड़ी स्टोर नेटे तो बातें जैसे सब खुल गए रिश्ती सच्चे जोत खुल गए इधर मना रहे हैं तो खुलो बोतू तो तैथ भी अभी उन्हें प्यूर हरियाली आई गई रिश्ती है ना का खाड़ी खाड़ी घाई बटते थोड़े आठ लार बोते है ना जने जंग खारी बोती सजोते हैं तो तैत तने डांग हैं देती है ना ता जे भी तमाम है ना कुदरती चीज़ें भी अगर कहीं तहने जैसे कुदरती नज़ारे नहने चाहता था सजे से पाएंगे है जे बटावे रिश्ते हैं जरूर गए और पू जैसे चसक भटौरी गल करें तो तैड़ी जैसे सिंगमल धारस तू है ना से हाट करने में कहे तू पदरी धारस थी मैठ मैठ जैसे गए भी है ना दुई ची महीने बीती तेने धारियाँ पजौरी बीती तहने बाड़ी जगह अस्थी अगर इन्हें अस खाड़ी खाड़ी घेत रहे तो घेत रहे तो नहीं लगतु भैब जैसे अमर छुई छन वस्तु है ना जे भी सुख शांति जे है ना थोड़े लगता कि रहना मुँह कुछ टाइम जैसे थोड़े सुख जे भी सुनो तू शांति जे कुदरत से है ना भगवान जे तस से जैसे पैंगे तेने जगह पुजलता तैसे जे मन ने अख भूतिन उनसे इच्छा कि भैया मन नहीं जगह कुड़ी तेल तो से जरूर तैसे तीन घेती

जी अत्रुभ देश नू गीत से सह सुनने वाले सुनू शेर सिंह जरियाले गल अंतर मुके देशे प्रदेशे खबरें भी अस्ती पे लैने सुनते प्रदेश अंतर पिछले कुछ दिन पुथा भीषण गर्मी चलते जंगलें अंतर आगे जैसे घटनाएं बढ़ने लगी रिश्ती राजधानी शिमले नीड़ अंतर जे जंगल जंगलें आगे वाली आधे क्या ज्यादा आधे दर्जन क्या ज्यादा घटनाएं जैसे भ्यूरी अस्ती सात सोलन जिले अंतर भी कई गए अंतर जैसे आगे खबरें अस्ती खास जे सोलन जिले पर्यटन कसोली जे सात लगते मनोन ग्रां गिलबर ट्रेल तथा अपर माल इलाके अंतर जंगल अंतर लगोरी आगे सेना वायुसेना तथा कसोली चंडीगढ़ प्रशासन ने मिली जुली कर जैसे कैब की ऐसा आगे अंतर भारतीय वायुसेना जैसे तसे जहाजे चंडीगढ़ सुखना लेक क्या पानी आर कर जैसे कैब की एस टेम अंतर जैसे पश्चिमी कमान ने आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जैसे जंगले आगे लगोरे इलाके कहीं भी जैसे दौरा किया अख होरी खबर अस्ती कि पूरे प्रदेश अंतर जैसे भीषण गर्मी दौर जारी अस्ता खास करी प्रदेश जे मैदानी जिले अस्ते अनंतर ऊना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़े सिरमौर सोलन तथा मैनी जिले मैणा भीषण गर्मी जैसे सामना करना ये रास्ता ऊना जिले तापमान लगभग 44 डिग्री तक पुजने वाली मठ गैबुर जैसे बीमार भून लगो रस्ते एनी चलते सेहती महकमे जैसे एडवाइजरी भी जारी की रिश्ती साथ ही भीषण गर्मियाँ क्या जैसे बचने की एहतियाती उपाय करने भी जैसे अन्य मैणा क्या अर्ज की रिश्ती शिमले मनाल तथा डलहौजी जी जे अस्ते अन्य शहरी अंतर गर्मियाँ क्या बचने की जैसे घुमलार मैणु कहीं भीड़ जैसे भू रिश्ती इस वर्ष मौसम महकमे बोलू कि 28 मई आज के रोज हिमालय इलाके अंतर ताज़ा पश्चिमी जे विक्षोभे जैसे सक्रिय होने वाली अस्ता ऐस प्रभावी वाली जैसे प्रदेश पंज जिलों चम्बे कांगड़े कुल्लू मैनी तथा शिमले जिले अंतर जैसे ओलावृष्टि अंधड़ आसमानी बिजली झड़ने तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार जे आंधी तूफान चलने वजह से ऑरेंज अलर्ट वजह से जारी के रास्ता तो ऐत थी कुछ खास खास खबरें तो ऐसे गर्मियों के बचने की जैसे मैं आपू खास करी जे मठ बच्चे बुते हैं तहने जैसे ध्यान थाना जरूरी अस्ता तो ऐ मुझे इसे थोड़ी जनी हो रही जी डकबोक लाने इसती से लाने इसती भ्यागे जैसे सैर करें है ना सुबह की सैर करें मतलब भ्यागे खड़ी भूं करी है ना हर एक मैनू लग तो है ना जैस लग तो कि नहीं रहा मपू जैसे सेहती खारा ध्यान थैन आस्ता मल जान जैसे खारी बोलता हूँ जिंदगी जैसे हो रही जे भी तैसे कुछ इच्छाएँ बोल है ना तैने पूरी कर सकता किसकी आख जे मैन बेचारा दुखे भूल है ना जैसे जाने जैसे शरीर जैसे तैसे साथ न बोलता तस्ती हुरी जत्री भी जे गाले भी होनी इसती से खोटी भी होनी इसती है ना किसकी तैसे आपू मन कोरे भूणसता कि आऊँ तो बीमार है ना तो अस जैसे बीमार है कि हम बचने की कहना चाहिए कि भ्यागे टेम हक तो सारा है ना सारी रात भरी मैन आराम

कीर बुता जान प्यूरी सुखे बुती ता खाड़ी भोई करी अकदम में जैसे जे हैं रोज के जे काम काज बुते तस्क दी जैसे जान त्यार होती तो कुड़ी कुड़ी भ्या गए थोड़े जने से आधा घंटा अगर अपनी काड़ बटेलता है खारी जैसे से मैं जिंदगी जी सकता किसकी भ्यागे कि भूतु अक्त से भ्या किनार है ना अचेलता भ्यागे रात में ही घेती है ना पौने पाँच बज तक खारे जैसे प्यागड़ भूई घेती बैर घेले पैंगे गल कर तैरते बिल्कुल ही शांत वातावरण है ना को चढ़ जैसे बाशने लगी हुई होती ना कोई तैठी जैसे है ना प्रदूषण होता साफ ताज़ी हवा होती कुदरती जे चीज़ जैसी तहीं नज़ारे नहीं सकते अगर कसे किछ भी नहीं करी तो अगर से थोड़ा आधा घंटा है ना हटने भी कम करल है ना थोड़ा पो बग बीड़ी तो कर गया एरे बगेरे हेरा तो देखें भी कि वो तो कि बाले बाले तस्ते ऐसे आखता से हटो रस्ता जे कि जरूरी है तो मैं हूँ जैसे मैं हूँ आपू जान जैसे खारी बना दी हटो भी जरूरी है तो है ना साथ साथ तसे जे बग बीड़ी दौरा करलता बग बीड़ भी हेरेंगे है ना रात ही कुड़ी है ना कुड़ी पैनी कुली जरूरत है कुड़ी की भोरू है ना से भी हेरेंगे कि रात है कहते मतलब जे दोनों बेले है ना रात की भोर बुतू साथ साथ तेने आपू जानी जैसे ध्यान भी थे छड़ा इन्हें तो मैं के टेम बूता बहाने जे है ना कि भाई बाग बीड़ी दौरा करी तो है ना तो कोई भी मतलब इन्हें लगत कि भाई हम सुतू तो घाई तो नहीं यार बाग दी तो हेन दी है ना बाग बीड़ हेन दी उख मुख हेन दी है ना कोई रात भैर स्टोर गुर हूँ है ना का शील शाज में तमाम चीज़ें तो भीती भीती में मैं आज के टाइम हेरे तो नगदी फसलें लैने रिश्ती तक तहने ध्यान थे दी ग्रां गोठे गल के तथों को मकड़ फलानी सब चीज़ें अभी इन्हें तो भूण इन्हू कि भाई हाँ ब्यागे टाइम भूता बल बल्ले खड़ियों बागे भी दौर क्या है ना अजे भी चीज़ इसती है अं इसलिए गल कर लगा कि किसकी आख मैन आपू जिंदगी है ना जिंदगी खारी तह जी सकता जिखें तेनी आपू सेह दी जैसे ध्यान थे रस्ता ना तो पता नहीं लगता कि है ना हर एक मैन क्या अगर आज ने टाइम कसे दी बोले तैयार की दी फलाना काम थे है ना तो मैन किशुन दे चिमू के टाइम में नहीं है ना पता नहीं आपू हिसाब है वैसे साचो बोल बोते होसके की कम आए कि तसे कने कम काज टूरे कुड़ी भी अस्तू पर कुड़ी ने कुड़ी हुरियां दी भले टाइम काड़े निकाड़े है ना आप दी आपू जान हेरी कह कि आऊँ इस मतों खाके बारी रहा मैं नहीं अंतर है ना जैसे आऊँ इस मतों खे रस्ता तो मुँह कुड़ी ने कुड़िया जिंदगी जात कर भोल तांत कर अगर सुखी जे सुख जे जीव है ना मुँह कोई दुख बीमारी नहीं लगे तो तैसती कि अस्तू कि भ्यागे शेर करे है ना कई अगर योग वगैरह का तो तैस करे है ना से नहीं तो ग्रां गोठे में आना पत नहीं दवाया है ना कि ये भूत शेर कन नहीं तो हर का से पता भूता कि ये जीत है ना शेर कन किए थोड़ी नहीं कि भाई बाले हटो ना तू आख दो चार किलोमीटर भी आना जाना करे है ना तीह मिनट है पीती काले तो बड़ी बात हुई गेती ताज़ी हवा है ना जान भी जैसे तो कहीं थोड़ी होशी आई गेती तो पत्या तस्किया बाद जे तेने रोज कने जे काम काज से तेने जैसे से कर सकते ता जे भी अं तो सिर्फ अं बता हर एक मैं क्या है ना अं अर्ज कर सकता कि मैं मन खे नियंत्रण से इस अख जिन बार जिंदगी हथियर इसती है ना होर तो पता इन कि भाई कहने बोरू है ना तेस हिसाब में उसे अगर जे खरी जिंदगी जीन इसती सुखे जे जिंदगी जीन इसती कि है ना का मुँह पत्या जे इस दवाई नहीं भाई कि हस्पताली कहीं चक्कर लाने पड़े है ना किसकी अब मन खेत कुड़ी ने कोई सुख दुख हीत रहने तेने ध्यान थैना बनता इन्हें भाई कि है ना मैं आपू जान नहीं ध्यान थे नहीं कम पत्या दौड़ गुरी ना खीणे टाइम खारू रोटी खेरी न आरामे टाइम खरा आराम करे रहा तो पत्या कि भूतू कि बाले बाले सेजे जान भूती ना अब मशीनरी हस्ती जान भी किसी आपू सब चीज़ें जैसे अंदर काम काज होने तस अब ध्यान न थे से रोटी के टाइम खारी रोटी नह तेली खीणे टाइम खारू खीण नह तेलू तो खेई कुड़ी ने कुड़ी जैसे है जान वाले वाले बिस्ट रहती था दुख बीमारी मैं लगती रहती था सुबह मैं जैसे भी आगे आधा पौना घंटा जरूर रप दिखाड़े दो चार किलोमीटर हटें शेर करे तो सुख जैसे जिंदगी जिए तस्कें पत्या जैसे होरी सब चीज़ जैसे भूई जाती ता टेम असकें घट बुता खोर में जैसे छुट्टी भजन तैयार थी रुस्तु सुनते सुने जी।

जी यत्रु बदेजनु गीत से सभी अबरू ले गाल अंतर हैं शून्य वाले शून्य गुथे ऐसे गीत से साथ साथ पंगवाड़ी कार्यक्रम में टाइम भी भूंगे रास्ता मुँह महेंद्र कुमार दे इजाजत नमस्कार।

0: लोकगीत अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो 3 बजे तक चला। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 1276 पंचायतों में वोट डाले गए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और आज रात तक सभी नतीजे घोषित

0: कर दिए जाएंगे। इस बीच 30 मई को तीसरे और अंतिम चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज दोपहर 3 बजे सक्रिय चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर सकेंगे। इस बीच पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। शिमला जिले के रोहडू विकासखंड की ब्रासली पंचायत की 110 वर्षीय सुरतु देवी, बिलासपुर जिला की कसारू पंचायत की 108 वर्षीय रूपा देवी, दकड़ी पंचायत की 107 वर्षीय मनभरु देवी, रोहडू क्षेत्र की दीउदी मायला पंचायत की 107 वर्षीय बाला देवी, बिलासपुर जिले की हरनोड़ा पंचायत की 106 वर्षीय संतराम, नूरपुर विकासखंड की पंजेड़ा पंचायत की 105 वर्षीय बाबूराम, बिलासपुर की भलसीणा पंचायत की 100 वर्षीय नारायण देवी और शिमला जिला की कोहलू जुबड़ पंचायत की 98 वर्षीय चम्मी देवी स्वयं मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंची। आज मतदान करने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप ने भी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए वोट डाले। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। कुल्लू जिला की लगघाटी की बड़ई बाग बीज सड़क पर आज एक टैक्सी वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। ये लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद शिरड़ मेला देखने जा रहे थे। घायलों को कुल्लू के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा एक बार फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की है। भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री ने 27 मई को शिमला जिला के नेरवा में स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण की घोषणा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कर्ण नंदा ने कहा कि मुख्यमंत्री का नेरवा दौरा और घोषणाएं चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से इस मामले में संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच करवाने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव आज धर्मशाला में आरंभ हुआ। इस मौके पर निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा शेरिंग ने कहा कि इस सांस्कृतिक उत्सव का उद्देश्य है भारत के लोगों को तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और उसके भू राजनीतिक महत्व से अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में देश के अन्य शहरों में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
1: तो हम लोगों ने सोचा कि तिब्बत के बारे में भारतीय लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत और तिब्बत का सीमा जो अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। तिब्बत बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोगों के मन में ये सोच है कि तिब्बत एक भूटान जैसा छोटा सा देश नहीं। तो ये सब समझ में आने से फिर तिब्बत और भारत का संबंध, भारत का एक विजडम हम लोग अभी तक उसको संभाल के रखा है। तो ये सब समझने के लिए अभी ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है और हमारे सोच ये है कि अगर फंडिंग ज्यादा तो हम लोग और ज्यादा कर सकें, तो भारत के दूसरे सिटीज में कर सकें।
0: धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव को भारत और तिब्बत की संस्कृति के संगम का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी तिब्बती संस्कृति को नजदीक से समझने का मौका मिलेगा।
2: भारतीय संस्कृति, तिब्बती संस्कृति है, ये दोनों का यहाँ पर एक संगम है। हम लोग यहाँ चाहे वो भारतीय हैं चाहे तिब्बती भाई बहन हैं, एक समाज की तरह साथ रहते हैं और कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, और इससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि बाहर से भी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको तिब्बती संस्कृति के प्रति जो है, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा उनको सीखने को भी मिलेगा, देखने को मिलेगा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और आकाशवाणी FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी दय शिमला केंद्र है। कांगड़ी कार्यक्रम लेने हाजिर है मैं दीपिका ठाकुर। कांगड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियों दीपिका दी राम राम। श्रोतियों उम्मीद है कि सुख शांति होंगे, राजी बाजी होंगे। श्रोते अज कार्यक्रम च अहां गलबात लानी है नैतिक शिक्षा के महत्व बारे। इस अलावा कार्यक्रम च अगे गलबात करनी पर्यावरण सुरक्षा पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गलबात ने नैतिक शिक्षा का महत्व पर।

दीपिका दी, राम राम। श्रोतो, उम्मीद है कि सुख शांतियां होंगे, राजी बाजी होंगे। श्रोतो, अज कार्यक्रम च अहां गलबात लानी है नैतिक शिक्षा दे महत्व बारे। इस दे अलावा कार्यक्रम च अगे गलबात करनी पर्यावरण सुरक्षा पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गलबात ने नैतिक शिक्षा का महत्व पर। माणू सिर्फ ज्ञान बुद्धि ते ही जड़ा है से महान नहीं बनता, बल्कि तिना दी सोच कदई है, संस्कार क्या हन, बर्ताव कदया है, तिस जो इन सब जो दिखी नहीं, तिस जो एक आदर्श माणू जड़ा है से अहाँ बोली सकते हैं। नैतिक शिक्षा अहाँ सच, ईमानदारी, दया, अनुशासन, सहयोग, मानवता का पाठ पढ़ाती है, ठीक गलत का अंतर समझने के काबिल बनाती है। नैतिक शिक्षा का मकसद जड़ा है सह सिर्फ यही नहीं है कि ज्ञान ही हासिल करना है, बल्कि जड़े माणु हैं तिना जो एक समाज च रहने लायक इंसान बनाना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। इसते अहें खरे कम करने, बुरे कम्मा ते दूर रहने की सीख मिलती है, खरे रस्ते पर अच्छे वधिया रस्ते पर चलने की चलना सीखते हैं। नैतिक शिक्षा चरित्र निर्माण च भी मददगार साबित होंदी है। माँ प्यो, बड़े बजुर्ग, गुरुजनों का आदर सम्मान करना सारे अहां सीखते हैं। इसते असर ते न्याणे, नौजवान बुरी सोबतां, बुरिया आदतों ते दूर रहिंदे। न्याणे जालू स्कूले च पढ़ा दे हुंदे तां देखा सह टाइम जिहड़ा हुंदा, सह उम्र जिहड़ी हुंदी है, सह तिन्हां दी जिहड़ी दा बड़ा मतलब खास एक पड़ा हुंदा है, क्योंकि तिस मौके तिन्हां दे चरित्र व्यक्तित्व का भी विकास हुंदा है। नैतिक शिक्षा देने ते देने च टबरे की सारियां ते ज़्यादा जिहड़ी है सह भूमिका रहिंदी है। टबरे टब्बर न्याणियां दा पहला स्कूल हुंदा, इं तो बोलते कि जिहड़े न्याणे हन तिन्हां स्कूलें भेजा सह स्कूलें कुछ जाई ने सीख गए, पर जिहड़ा टब्बर हुंदा है घरे च जिहड़े माँ प्यो हुंदे हन, बड़े बजुर्ग हुंदे हन, सह तिन्हां ते ही सारे ते पहले बच्चे जिहड़े हन सह कुछ सीखना लगते हैं। पहला स्कूल जिहड़ा है सह टब्बर ही है। माँ प्यो न्याणियों खरे संस्कार दिंदे, नैतिक मूल्य सिखाते। न्याणियों का अगर गल करन तां न्याणियों का बर्ताव जिहड़ा है, बच्चों का बर्ताव जिहड़ा है सह ज़्यादातर तिन्हां दे टबरे मुताबक ही रहिंदा है। अगर टबरे च न्याणे खरे संस्कार देंगे तो अगे चली ने बड़े होए ने सह खरे नागरिक बनने। इस करी ये जरूरी हो जाता है, इस गल्ला का खास ख्याल हाँ सारे ही रखना चाहिए कि घर च जड़ा है सह माहौल बढ़िया होना चाहिए, आपसी प्यार का माहौल हो, गलबात भी एक दूए ने करते हैं, बड़े ने छोटे ने बजुर्गों ने भी अगर गलबात करते हैं तो भी सह भी गलबात ओले करना चाहिए, सुलझी गल जी है सह करना चाहिए। ऊंचिया घर दिखा कई बार क्या होंगे ना कि मतलब खूब जोर जोर ने डना लगते हैं, एक दूए हक पानी या कोई कम बोलना कुछ भी करना है तो ऊंची आवाजा च जड़िया सह हकं पा लगते हैं, तो इं गल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखा किसी घर जोड़ा है सह बच्चे भी रहा होंगे हैं, सह भी सब कुछ दिखते हैं कि जिहड़े माँ प्यो हैं या होर लोग हैं जो एक दूए ने कदिया करी बर्ताव करा दे हैं, तो सही जे कुछ बर्ताव घर होना तो न्याणियां भी सही सारा कुछ सीखना। इस करी टबरे च जिहड़ा है सह शांत माहौल कने हंसी मजाक दा माहौल होना चाहिए, हंसी मजाक रहेंगा उंगा हुंदा रहेंगा घर च, इससे क्या होंदा है कि घर की रौनक जिहड़ी है सह बढ़ती है। कई बार क्या करते कि कुछ ही दिखा मतलब जोरे जोरे ने हक पाना लगते हैं तो सह बच्चे भी सही सीखते हैं, अगर डड्डी डड्डी ने हक पाएंगे एक दूए जो तो तिना भी जड़ा है सह तिना जो भी अगर हाँ कोई गल बात कर गए कुछ गल का जवाब हाँ मंग गए तो तिना भी तिना का बर्ताव भी जड़ा है सह सह दिया ही होना। इस करी ने घर जड़ा है सह हौले सलीके ने गल करना चाहिए, क्योंकि न्याणे तो सही सब कुछ सीखना, जे कुछ सह तिना टबरे च अपने बड़िया बोलते करते बर्ताव करते दिखना, जे कुछ कने ये उम्र ऐसी कच्ची उम्र होंगी है ना कि जे कुछ तिना दे मने च एक बारी बही आंदा है ना तो सह उम्र भर जड़ा है सह मतलब तिना दे दिमागे ते सह गल्लां निकल दियां नहीं हन, ता मतलब खरा खरा खरे संस्कार देना चाहिए, खरा बर्ताव तिना कन्नै करना चाहिए, माहौल घरे दा जिहड़ा है सह बढ़िया होना चाहिए। इस दे अलावा स्कूलें पढ़ना जाते हैं तो मास्टर

तरसेम पाल शर्मा दे गाए इस लोकगीत कने ही कांगड़ी कार्यक्रम का समा भी होवा दा। श्रोतियो अगली मुलाकात होनी हुण आने वाले शनिचरे। तपदिया तौंदिया च अपना खास ख्याल रखन। नमस्कार।

जुले नमस्ते इनी हिंची पा छाई दो गीस तंजन आंगमो मांगची आकेशवाणी की गर्जे पर प्रोग्राम दो तिमरिल नंगयंपो स्वागत लिखत थनशे हो श्रित मई छत पर केश निरंगीची रोता छत पर जोमिन मई के येश व थन हिंजी थे छत पर बोंठे फेंके थन की विषय ख हेज लो नंग भीषण गर्मी और लू से बचाव के उपाय थन ये थे विषय नम ये बोंठे के जिमेश बल्कि राई जुक्स सेहत जीवन शैली नांग दक्षम की लिखी चू पर्यावरण यंपो जुड़ाई के तिकी गंभीर मुद्दा तीयश द्वांग रुकची राई रई लू राई चुल्लो रोय एरी भारत

नुई ध्यान दच ग्युशियेश दरुंग शांति शांजी जो बेतेजी चोकसे यशलिकच ग्युशियेश ताजी जुक्स तो नुई छत्पा क्यमेंगी गिहरेश छत्पा बक्तंग नुई तला बुना जमीन थजनी गर्मी बक्ता होश मई तेला तई मसाला तई एरी जुक्स की बोनठे एरी जुक्स की नाना छत नुई पैदा लिखचीश व इची ठुप ठुप तलाई लिखशी नंग मसाला नुई तई जमीन थजनी दन तोंगपा थबुनी गुई एलमेन तनंग क्यूमाची एपो नंग पौष्टिक जमीन जजी एलनी दन तोंगपा रोज छत पाई नुई असर लिखचीश क्यूमा रोज सोई बुचुम की कोशिश लेनी आलची आलसी आल जिबुनी जाली तई चू आलसी आलसी तीनी मच्छर बू छाई मरारे बोंठे याई याई पर्दा तनी मिन तो पौधा जी तनी सोती की छिड़काव लीनी थे छाई इरांग जो नंग एरी आस पास की वातावरण जो सोई नंग थीब न बुचीश शेल छत पर बक्तांग रीदांग लेनी पर जो नंग मजदूर जो असर क्यमेश खुश में छत पर रो छाई बसल तेजी असर फिला खुला आसमान दुलेन लिखचा परेक ची पजू के ईश रीदांग लेनी पजो बिल्डिंग क्यूमा ची लिखची पजो रेडी तई पजो ट्रैफिक पुलिस पजो डिलीवरी कर्मचारी थे छाई जो लेन गी बोंठे छत पर रो रे लेन लिखचा मजबूरी ईश ताल जी बोंठे सरकार नंग समाज निस्पेर तो खर सुविधा ती दच ग्यूनशीश द फ्यस एरी प्रदेश की ली नंग एरी प्रदेश सोई मौसम नंग दे नज़ारा की बोंठे सिशियन छो पर कई साल रोकची एरंग मारे नोई छत पर कई हेश दुरे मई जून दो नम थिप न एपो जोई नीस वथन कई जिला रोता आई न गतो गतो सकेत सुख से छत पर कई लीश हिंग जी थन सावधानी मली नंग ररे चु बक्तांग मी जी मी जो होश में कई कमेश नंग बारतो की सामना लिखचा दचुश छतपा हर साल रमेश पर साल नंग यंपो नोई बसल नोई के येश सावधान किया रे एरी नंग समाज की मी जी छाई की जिम्मेवारी तीयेश सोती एरंग जी जीवन दचीश बुटा एरी सकेत रोसोई बुचीश नंग जागरूक के नंग राय बोंठे एपोएश थे छाई फैस रो हित बुची पर्यावरण की सुरक्षित पूछा एरी जिम्मेवारी तीहेश राय टबर पड़ोसी बेते नंग शांति शांगजी जो छाई की ध्यान बुनी यश लीनी थे ना यंपो थे फैस ख्या खोम गते थे फैस नंग यंपो ललती हिनकते ललमिन सेम लेते ओ सुशीला नंग यतोई थिरची ललती

की लेन दवाई लेन थली नी थजू रु खतरा ते यश। अगर दवा कटाई के थी नंग यू न शिकायत लीनी। बैंक पर जो पता देनी साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 रो कॉल लीनी। शिकायत लिख चूंगी वेबसाइट रे रमेश नुमांग पता देनी। थे बुनते जागरूक किया नी सुरक्षित जनी नंग छाई दो थे बुनते पता नंग हा गुशा देनी। द थे नंग यंपो हे ललती हिनकती तूने लिया सुखदास थी ची ललती।

दथन गी समाचार हिनकते। ईद उल अजा लो नंग बकर ईद गी पर्व थन प्रदेश छाई दो थस नंग भाईचारा नंग यंपो मनाई लिखचीश। थे मौका रो खचे समाज गी मीजी ईद गाहो रो एल जी ईद की नमाज लोजी नंग हितिक शोरे मुबारक बाद दचियश। थे दौरान मीजी अमन थिप नंग खुशहाली बोंठे मोलम तचियश। राजधानी शिमला रो ईद की मुख्य ईदगाह मैदान रो अतलिशियश। चंबा रो रे ऐतिहासिक चौगान नंबर गाई रो ईद की नमाज लुकशीश। नंग थे मौका रो क्युक्सी क्युक्सी बेते जी दे दी फोस फोस जी नंग शंगटे शंगजी जी बकर ईद की अवसर दो नमाज की नाना भाग लिखशीश। लाहौल नंग स्पीति रो जुड़ाई लीजी बुची चुल्लो सर ग्रम्फू चंद्रताल की अमसी याई मोटर जी बोंठे बहाल लिखशीश। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन नंग सीमा सड़क संगठन मांगची दचितु विज्ञप्ति रो लुशीश की थे अमसी फिलहाल 4x4 मोटर नंग याई मोटर जी बोंठे आल जीश। अमसी पूरा तैयार लीजी खोची रमेन सुबक्ता ली नंग तेजी तेजी मोटर जी बोंठे आल चूच लुत्ता। जिला प्रशासन जी लोशीश थे अमसी रो मोटर गी अमचुम नम नंग अमसी गी स्थिति यर तो निर्भरेश। जिला प्रशासन जी अमसी पजमी जो दैनिक एडवाइजरी गी पालन लिखचुम गी अपील लिखता। थे बलाकुंग मुलिंग पुल रो रुद्र जी मनाली ले अमसी रो याई मोटर रो केस जी जो अमचा बोंठे आलता। द थे प्रोग्राम गी आखिर लला हिनकते

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बागवान श्रोता को हमारा नमस्कार। किसान बागवान श्रोताओं, हाजिर हैं हम आपका दैनिक जानकारी और मनोरंजन भरा कार्यक्रम कृषि जगत लेकर, जिसमें इस अंक को लेकर मैं हूं रविंद्र विशिष्ट।
1: और मैं हूं शिवरंजन।
0: जी शिवरंजन जी, कैसे हैं आप
1: जी? मेरे हाल चाल एकदम बढ़िया हैं। आप सुनाइए रविंद्र जी, कैसे हैं आप?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान बागवान श्रोता भी कुशल मंगल होंगे। तो ऐसे गर्मी के मौसम में हम चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पशुधन की भी सुरक्षा करते हुए अपना कृषि बागवानी कार्य सुचारू रूप से करते रहें।
1: जी
0: तो शिवरंजन जी, क्या कुछ आप लेकर आए हैं आज हमारे किसान बागवान श्रोताओं के लिए कृषि जगत की संक में?
1: किसान भाइयों, आज काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है पॉली हाउस में बीज रहित खीरे का उत्पादन आप किस तरह से कर सकते हैं। करवाएंगे मनोरंजन आपका लोकगीत से और सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी। विषय रहेगा ब्लूबेरी की खेती। और किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंत में देंगे जानकारी आपको कल के आकर्षण की भी।
0: गत वर्षों से जैविक उत्पाद का प्रचलन बढ़ा है और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पॉली हाउस में बीज रहित खीरे के उत्पादन की। किसान बागवान श्रोताओं, खीरे के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु और भूमि की यदि हम बात करें तो खीरा एक उप उष्ण कटिबंधीय सब्जी है। उच्च प्रकाश, आर्द्रता, नमी, तापमान और उर्वरक इसकी बढ़ोतरी के लिए जरूरी होते हैं।
1: जी,
0: जब पर्यावरण और पोषण की परिस्थितियां अनुकूल और स्थिर हों और नाशी जीव नियंत्रण में हों तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं और भारी उपज देते हैं। खीरे के पौधे तापमान के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं।

0: किसान बागवान श्रोताओं, इसलिए तापमान अनुकूल न होने के कारण पौधों की बढ़ोतरी और उपज में कमी आ सकती है। ये एक कम अवधि की फसल है जो कि पाले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। 14 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान फलों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और अनुकूल होता है। खीरे के पौधों को मध्यम जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए ये पॉलीहाउस में बढ़िया उगते हैं। अच्छे निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। भारी, गीली और पानी के कम निकास वाली मिट्टी में इसे उगाना नहीं चाहिए। 5.6 से 6.5 pH मान वाली मिट्टी में खीरे की फसल बहुत अच्छी उपज देती है।
1: किसान भाइयों, खीरा एक खुरदरा बेलदार व वार्षिक पौधा है जिसके पत्तों और तने पर सख्त व कांटे होते हैं। 2-3 पत्ते निकलने के बाद बेल बनने लगती है और साथ ही साथ शाखाओं में बंटने लगती है। जैसे ही शाखाएं निकलती है, पत्तों के आधार से फूलों के गुच्छे निकलने लग पड़ते हैं। खीरा एक अनियमित ऊंचाई वाला पौधा है जिसके नए विकसित हिस्सों पर लगातार फूल लगते रहते हैं। किसान भाइयों, मुख्य तना किनारे वाली शाखाएं तेजी से बढ़ने लग जाती है। इनकी लगातार कटाई छंटाई करके एक तना रखा जाता है और तारों के साथ सिधाया जाता है ताकि पत्तों की बढ़िया छतरी बन सके, जिससे अधिकतम प्रकाश को अवरुद्ध किया जा सके व वायु का संचार भी पर्याप्त हो। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक पत्ते के आधार में कई फल लग सकते हैं। फलों का पूरा आकार विकसित करने के लिए उनकी छंटाई कर सकते हैं। अत्यधिक फलों वाला पौधा कमजोर हो जाता है, फल झड़ने लगते हैं और समय बीतने के साथ साथ उत्पादकता में व्यापक उतार चढ़ाव भी आता रहता है।
0: बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोताओं खीरे के सफल उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान की। हवा का तापमान अंकुरण वृद्धि, फूल लगने, फल वृद्धि और फल गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला मुख्य पर्यावरण घटक है। टमाटर के मुकाबले खीरा कम तापमान में अधिक संवेदनशील है। लगातार उत्पादन के लिए न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। अत्यधिक ऊंचे तापमान से भी फल उत्पादन और गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए किसान बागवान श्रोताओं लंबे समय तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर अंकुरण कक्ष का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस हो तो खीरे के बीज तेजी से यानी कि 2 से 3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। एक बार बीज का अंकुरण हो जाने पर बीज की ट्रे का आवरण हटा दें और तापमान को 22 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दें और लगातार अधिक प्रकाश की व्यवस्था बनाए रखें।
1: जी, इन परिस्थितियों को 5 से 7 दिनों तक बनाए रखें जब तक पौधे पर्याप्त रूप से बड़े ना हो जाएं ताकि उन्हें सुरक्षित रूप से संभाला जा सके। लेकिन इन परिस्थितियों को इतने लंबे समय तक भी नहीं बनाए रखें कि पौधों को स्थान की तंगी हो जाए, उनमें पीलापन आ जाए या वे बहुत लंबे पतले हो जाए। पौध की वृद्धि दर 24 घंटे के औसत तापमान पर निर्भर करती है। औसत वायु तापमान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से वृद्धि भी होगी। दिन रात के तापमान में जितनी ज्यादा विभिन्नता होगी पौधे उतने ही लंबे व उनके पत्तों का आकार उतना ही छोटा होगा। हालांकि दिन रात के लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम वृद्धि होती है। 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रात्रि के तापमान व 22 से 24 डिग्री सेल्सियस दिन के तापमान पर अधिकतम फल उत्पादन प्राप्त होता है।
0: जी, अब बात कर लेते हैं किसान बागवान श्रोता हो कि खीरे के पौधे के लिए तापमान कितना होना चाहिए, यानी कि दिन के समय और रात के समय कितना तापमान होना चाहिए। रात के दौरान किसान बागवान श्रोताओं खीरे के उत्पादन के लिए न्यूनतम तापमान रहना चाहिए 19 डिग्री, दिन के समय न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिक प्रकाश वाले क्षेत्रों में रात के समय 21 डिग्री सेल्सियस।
1: जी किसान भाइयों, पौधे के विकास में प्रकाश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है। पत्तियां पौधे की खाना बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, हालांकि ये इनके समानुपात में नहीं होती है। सर्दियों में प्रकाश का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह अपर्याप्त हो जाता है।
0: जी, ये तो बात हुई किसान बागवान श्रोताओं उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था की। अब बात कर लेते हैं कि अपेक्षित आर्द्रता यानी कि नमी खीरे के उत्पादन के लिए कितने लगभग चाहिए होती है। आमतौर पर उच्च अपेक्षित आर्द्रता वृद्धि में सहायता करती है, जबकि मध्यम या कम आर्द्रता पर भी उचित वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। नमी की कमी या अधिकता को फसल सहन नहीं कर सकती और इसके अनुसार अपने को ढाल सकती है, लेकिन नमी में अत्यधिक और लगातार परिवर्तन को लेकर ये काफी संवेदनशील है। इस तरह के परिवर्तन को इसकी संवेदनशीलता तब ज्यादा होती है जब फसल को उच्च अपेक्षित आर्द्रता में पैदा किया जाता है। इससे

0: पौधों पर पानी जमने और खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अधिक नमी से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे कुछ पोषक तत्वों का अपर्याप्त अवशोषण और परिवहन होता है। विशेषकर कैल्शियम का परतों के किनारों और फलों को कम नमी की अवस्था में सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा कम नमी में सफेद चूर्ण सीता रोग और स्पाइडर माइट अधिक फैलते हैं, जो कि पॉलीहाउस में कुहासा या कोहरा प्रणाली लगाने और चलाने के औचित्य को सही ठहराते हैं।
1: जी किसान भाइयों, बात करें अगर हम किस्मों के चयन की, तो फसल उत्पादन की प्रक्रिया में उचित किस्म का चयन सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। पॉलीहाउस में खीरे के उत्पादन हेतु कई किस्में उपलब्ध हैं। किस्मों के चयन हेतु रोग प्रतिरोध, पौध प्रबलता, शीघ्र व कुल उपज, फलों का आकार व फल की सामान्यता, गुणवत्ता सहित कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। पॉलीहाउस में ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जिसके पौधों पर केवल मादा फूल ज्यादा आए और फल बीज रहित कोमल एवं मुलायम और आकर्षक रंग व आकार का हो व अधिक उपज देने वाला हो। कुछ संकर बीज रहित किस्में जैसे कया, अकामिर व सटीस पॉलीहाउस के लिए उपयुक्त है। इनमें परागण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ मिलने वाली किस्में जापानीज लोग ग्रीन, पूसा संयोग, पाइनसेट, मालिनी और मालती किस्मों को भी सफलतापूर्वक परागण की व्यवस्था कर, जिसमें मधुमक्खी को अंदर रखा जाता है, उसके द्वारा पॉलीहाउस में उत्पादन किया जा सकता है।
0: जी, बात यदि की जाए किसान बागबान श्रोताओं खीरे की उन्नत किस्मों की, किस्मों में सबसे पहले हम बात करेंगे देवगिरी, मालिनी, मोहिनी, फाउंटेन टॉप और पिकलिक खीरा और आइवरी। तो ये कुछ एक उन्नत किस्में हैं जिन्हें हमारे किसान बागवान श्रोता अपने खीरा उत्पादन के लिए अपने खेतों में लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी, नर्सरी और पौधरोपण की। पॉलीहाउस में पौधों की रोपाई से एक माह पहले खेत को गहरी खुदाई पर भुरभुरा बनाएं और रोगाणुओं और कीटाणुओं से निदान पाने के लिए मिट्टी फार्मलिन से उपचारित कर ढक दें। इसके बाद एक सप्ताह बाद मिट्टी को उलट पलट कर रसायन की गैस को अच्छी तरह निकाल दें। खीरे की पौध नियंत्रित वातावरण में पूरे साल पॉलीबैग या ट्रे में उगाई जा सकती है। इसके अंकुरण के लिए 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित रहता है। पौध विषाणु रहित हो इसके लिए मिट्टी को पहले उपचारित कर बिजाई करनी चाहिए। 4 से 5 पत्तियां आने पर इसे उपयुक्त स्थान पर रोपित करें। तैयार पौध को किस्म के अनुसार 70 से 150 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 30 से 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपाई की जानी चाहिए।
1: जी
0: ये तो बात हुई किसान बागवान श्रोताओं जानकारी की। अब निश्चित रूप से रोजाना की तरह आप सभी को इंतजार होगा मनोरंजन का। तो आइए हम और आप सुनते हैं युवा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत। किसान भाइयों, अब मनोरंजन के बाद कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत सुनवाने का। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय रहेगा ब्लूबेरी की खेती। बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर शकुन राणा और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं हेमराज शर्मा। आइए सुनते हैं।
1: जी, किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि जगत कार्यक्रम में हर रोज हम आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी कृषि और बागवानी से संबंधित विषयों पर देते रहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर शकुन राणा। तो डॉक्टर शकुन राणा जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो आने पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। आज जिस विषय के बारे में हम किसान और बागवान भाई बहनों से बात करेंगे उसका नाम है ब्लूबेरी की खेती। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ब्लूबेरी फल का क्या महत्व है।
2: सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। ब्लूबेरी एक पौष्टिक और महंगा फल है जिसकी मांग भारत में धीरे धीरे बढ़ रही है। सही जलवायु और मिट्टी में इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये फल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत है। ये फल दिल के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, आंखों के लिए अच्छा है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हैं जो कि मस्तिष्क की नसों को सक्रिय करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये सुपर फूड है।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शकुन राणा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ब्लूबेरी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होनी चाहिए।
2: ब्लूबेरी की सबसे अच्छी वृद्धि 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है।
1: जी,
2: आर्द्रता 50 से 70% के बीच रहनी चाहिए। ब्लूबेरी की झाड़ियाँ भरपूर धूप में सबसे अच्छी तरह उगती हैं। ये थोड़ी छाया भी सहन कर सकती हैं, खासकर दोपहर बाद। ब्लूबेरी को सुप्त अवस्था से बाहर आने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे 150 से 1200 चिलिंग आस की आवश्यकता होती है। ब्लूबेरी को उगाने का क्षेत्र पाले से मुक्त होना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, तो ये तो आपने बात कही कि ब्लूबेरी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ब्लूबेरी की खेती के लिए मिट्टी जो है वो किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है।
2: ब्लूबेरी हल्की अच्छी जल निकासी वाली अम्लीय मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उगती है। ब्लूबेरी के लिए उच्च कार्बनिक पदार्थ वाली गहरी दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी जिसकी पीएच 4.5 से 5.5 हो उपयुक्त है।
1: जी डॉक्टर साहब, मिट्टी की भी बात हमने कर ली। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लूबेरी के

0: प्रमुख प्रकार और उनकी जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है?
1: ब्लूबेरी को चिलिंग आवर्स और झाड़ी की वृद्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे
0: जी
1: कि पहला है लो बुश ब्लूबेरी, इसको सुप्त अवस्था से बाहर आने के लिए 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे 1000 से 1200 चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है।
0: जी
1: लो बुश ब्लूबेरी की ऊंचाई 1 से 2 फीट रहती है। दूसरी है हाफ हाई ब्लूबेरी, जैसे कि नॉर्थ ब्लू, नॉर्थ स्काई, नॉर्थ कंट्री को भी 1000 से 1200 चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है और इनकी ऊंचाई 3 से 4 फीट होती है। तीसरी है रेबिट आई ब्लूबेरी, उदाहरण के तौर पर ब्राइट वेल, पाउडर ब्लू, टिप ब्लू, प्रीमियर, इनको सुप्त अवस्था से बाहर आने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस के नीचे 450 से 600 चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है और इनकी ऊंचाई 6 से 10 फीट रहती है। चौथी है सदर्न हाईबुश ब्लूबेरी, वेलॉक्सी, मिस्टी, शार्प ब्लू, एमराल्ड, इनको 150 से 400 चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है और इनकी ऊंचाई 6 से 8 फीट रहती है। पांचवी है नॉर्दर्न हाईबुश ब्लूबेरी, उदाहरण के तौर पर ड्यूक, स्पार्टन, ब्लू क्रॉप, ड्रेपर, लिबर्टी, चैंडलर, ब्लू रिबन, डैरो, टोरो, रेका, इनको 800 से 1000 चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है और इनकी ऊंचाई 5 से 9 फीट रहती है।
0: जी तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें जानकारी दी हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को कि ब्लूबेरी की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है। जी तो डॉक्टर साहब देखिए, ये तो आपने जानकारी दी कि ब्लूबेरी की जो खेती है वो मिट्टी में भी और मिट्टी रहित माध्यम दोनों माध्यमों से, दोनों तरीकों से ब्लूबेरी की खेती की जा सकती है। इसके बाद डॉक्टर शकुन राणा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ब्लूबेरी की खेती में सिंचाई का क्या महत्व है और ब्लूबेरी में उर्वरकों का उपयोग कैसे किया जाता है?
1: ब्लूबेरी की जड़ें उथली और रेशेदार होती हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ उर्वरक की सुविधा अत्यंत लाभकारी होती है। प्रति सप्ताह 1 से 2 इंच पानी देना चाहिए। नियमित अंतराल पर उर्वरक देना आवश्यक है, विशेष रूप से जब ब्लूबेरी को बिना मिट्टी वाले माध्यम में उगाया जा रहा हो। आमतौर पर किए जाने वाले उर्वरक जैसे कि अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, 19-19-19, मोनोअमोनियम फॉस्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, नाइट्रिक एसिड आदि का उपयोग किया जाता है। 15 जनवरी से 15 अक्टूबर तक सप्ताह में एक बार ब्लूबेरी में पौधों की वृद्धि के अवस्था के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है।
0: जी तो ब्लूबेरी की खेती में सिंचाई की बात भी आपने हमारे किसान और बागवान भाई बहनों से की। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्लूबेरी में प्रशिक्षण और छंटाई कैसे की जाती है और ब्लूबेरी में फूल आने और फल लगाने का समय क्या होता है?
1: अगर हम प्रशिक्षण और छंटाई की बात करें तो ब्लूबेरी को मल्टी स्टेम पर प्रशिक्षित किया जाता है।
0: जी
1: नई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल झाड़ी की छंटाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान झाड़ी कई शाखाएं पैदा करती है, लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी हो जाती है नई शाखाओं का निकलना कम हो जाता है, जिससे अंततः पौधों की फल देने की क्षमता घट जाती है। एक पौधे में 9 से 12 उत्पादक शाखाएं होनी चाहिए और 5 से 6 वर्ष से अधिक पुरानी शाखाओं को हटा दिया जाता है। कमजोर, पतली, टूटी, बीमारी और कीड़ों से ग्रस्त शाखाओं को भी हटा दिया जाता है। नॉर्दर्न हाईबुश ब्लूबेरी की छंटाई सर्दियों के आखिरी महीनों से लेकर वसंत ऋतु की शुरुआत तक की जाती है, जबकि सदर्न हाईबुश ब्लूबेरी जो कि गर्म इलाकों में होती है कि गर्मियों में फलों की कटाई के बाद छंटाई की जाती है।
0: जी
1: ब्लूबेरी 1 साल पुरानी शाखाओं के शीर्ष भाग पर प्रत्येक कली पर फूल लगते हैं। प्रत्येक कली में 5 से 8 फल लगते हैं। फूल फरवरी मार्च में आना शुरू होते हैं और फल अप्रैल मई और कई बार जून में भी जाकर पकते हैं। हालांकि ब्लूबेरी में सेल्फ पोलिनेशन होती है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन से फलों की संख्या बढ़ती है और फल बड़े होते हैं, इसलिए 2-3 किस्मों को एक साथ लगाया जाता है। मधुमक्खियां और बम्बल बीस मुख्य परागणकर्ता है। प्रति हेक्टेयर 2 से 3 मधुमक्खी के छत्ते उपयुक्त होते हैं। बम्बल बीस शहद वाली मक्खियों की तुलना अधिक प्रभावी पोलिनेटर्स होती हैं।
0: जी तो डॉक्टर साहब देखिए, ये तो आपने हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को बताया कि ब्लूबेरी में प्रशिक्षण और छंटाई किस तरह से की जाती है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लूबेरी में फल तोड़ना, भंडारण और विपणन कैसे किया जाता है?
1: फूल आने के बाद ब्लूबेरी को पकने में लगभग 45 से 60 दिन लगते हैं।
0: जी
1: फल तब तोड़े जाते हैं जब उनका रंग नीला हो जाता है। रोपण के तीसरे वर्ष के बाद औसत उपज लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रति पौधा होती है, जो कि आने वाले वर्षों में प्रति पौधा 6 किलोग्राम तक हो सकती है।
0: जी
1: ब्लूबेरी के फल अप्रैल और मई में 4 से 5 बार तोड़े जाते हैं। ब्लूबेरी तोड़ने के बाद नहीं पकती है, इसलिए इसका ख्याल रखें कि जो ब्लूबेरी है वो पौधे पर ही पक जाए तभी उसको तोड़ें। अगर हम भंडारण और विपणन की बात करें तो फलों को तोड़ने के 4 घंटे के भीतर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे फोर्स्ड एयर कूलिंग से ठंडा किया जाता है, फिर उन्हें तुरंत पैक किया जाना चाहिए और अधिकतम गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ के लिए 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे कमरे में रखा जाना चाहिए। ब्लूबेरी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए -0.5 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 90 से 95%

0: आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पर रखना चाहिए
1: जी।
0: हाईबुश ब्लूबेरी को 2 सप्ताह तक और रेबिटाइप ब्लूबेरी को 4 सप्ताह तक स्टोर किया जा सकता है। ब्लूबेरी आमतौर पर 125 ग्राम के ढक्कन वाले प्लास्टिक के पैकेट या प्यूनेट्स में मिलती है ताकि नमी का नुकसान ना हो। ब्लूबेरी को बिना किसी पूर्व उपचार के फ्रीज भी किया जा सकता है और बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लूबेरी फ्रीज करने के लिए सबसे आसान फलों में से एक है। अगर हम आमदनी की बात करें तो ब्लूबेरी लगभग 1500 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बाजार में बेची जाती है।
1: जी, मतलब अगर हमारे किसान और बागवान भाई बहन ब्लूबेरी की खेती करें तो अच्छा खासा मुनाफा जो है वो ब्लूबेरी की खेती करके कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल जी।
1: डॉक्टर साहब, ब्लूबेरी में फल तोड़ने की बात भी आपने की, फल किस तरह से तोड़ने हैं, भंडारण और विपणन की बात की। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लूबेरी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बीमारियां और कीट लग जाते हैं।
0: ब्लूबेरी के पौधे में कई प्रकार के फफूंद, जीवाणु और विषाणु रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं जो जड़ों, तनों, पत्तियों और फलों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे अक्सर उपज में कमी, समय से पहले पत्तियों का झड़ना और पौधे की मृत्यु हो सकती है। प्रमुख रोगों की अगर हम बात करें तो ममी बेरी, फाइटोफ्थोरा रूट रॉट, स्टेम ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज फ्रूट रॉट कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लूबेरी के लिए काफी घातक होती हैं। प्रभावी प्रबंधन में रोग मुक्त पौधों का उपयोग करना, अच्छी जल निकासी सुनिश्चित करना और फफूंदनाशकों का प्रयोग करना शामिल है
1: जी।
0: अगर हम कीटों की बात करें तो कीटों में एफिड्स, ब्लूबेरी मैगेट्स, क्रेनबेरी वीविल, ब्लूबेरी बडमाइट, स्केल्स, थ्रिप्स आदि ब्लूबेरी में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कीट हैं, जिनकी प्रबंधन रणनीतियों में निगरानी करना, संक्रमित फलों को हटाना, संक्रमित टहनियों की छटाई करना और खरपतवारों को नियंत्रित करना शामिल है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब देखिए, ब्लूबेरी की खेती की बात करते करते अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। अब अंत में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ब्लूबेरी की खेती करते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें मुख्य रूप से काफी चीजों का ध्यान रखने पड़ता है ब्लूबेरी की खेती करते समय।
1: जी,
0: जैसे कि ब्लूबेरी की अधिकतम पैदावार के लिए मिट्टी या मीडिया का पीएच 4.5 से 5.5 के बीच बनाए रखना
1: जी।
0: मिट्टी के पीएच की नियमित रूप से निगरानी करना। ब्लूबेरी की जड़ें आमतौर पर रेशेदार या फाइबरस होती हैं और उनमें रूट हेयर्स नहीं होते हैं, वह मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित होती हैं। ब्लूबेरी की जड़ प्रणाली को नम रखने और खरपतवार को खत्म करने के लिए रोपण के बाद 2 से 4 इंच मोटी लकड़ी के चिप्स, बुरादा या चीड़ की पत्तियों की मल्चिंग करना अनिवार्य है
1: जी।
0: ब्लूबेरी सूखे के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। गमलों में पानी देते रहें, मिट्टी को समान रूप से नम रखें। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ उर्वरक की सुविधा अत्यंत लाभकारी होती है। यदि गमलों को कठोर सतह पर रखा जाए तो जल निकासी के लिए उन्हें ईंटों के ऊपर रखें
1: जी।
0: अगर हम उर्वरकों की बात करें तो ब्लूबेरी के पौधे नाइट्रोजन के अमोनियम रूप को नाइट्रेट रूप की तुलना में अधिक पसंद करते हैं
1: जी।
0: अमोनियम सल्फेट और यूरिया उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रेट या क्लोराइड युक्त उर्वरकों का प्रयोग ना करें। नाइट्रेट या क्लोराइड युक्त उर्वरकों की अधिक मात्रा पौधों को जला देती है। ब्लूबेरी को अम्लीय उर्वरक की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: यदि मिट्टी का पीएच 5 से कम है तो अमोनियम सल्फेट युक्त उर्वरक मिश्रण का प्रयोग ना करें। स्थापित पौधों पर 23 से 34 ग्राम एलिमेंटल सल्फर या गंधक प्रति वर्ग मीटर से अधिक प्रयोग ना करें ताकि पौधों को नुकसान ना पहुंचे। और अंत में पक्षियों, ओलावृष्टि, बारिश और तापमान की चरम स्थितियों से फसल को बचाने के लिए ब्लूबेरी की खेती एंटीबर्न नेट्स में, वॉक इन टनल्स में या प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस में की जा सकती है, जिससे पर्याप्त वेंटिलेशन या वायु संचार हो।
1: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई कि ब्लूबेरी की खेती करते समय हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, तो अंत में आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं किसान भाई और बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ब्लूबेरी की खेती जो है बहुत ही लाभदायक खेती है, तो बागवान बंधु ब्लूबेरी की खेती के बारे में और गहराई से नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं और इस खेती की तरफ अग्रसर हो सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए और ब्लूबेरी की खेती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को दी। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: किसान बागवान श्रोताओं, अभी आपने सुना एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था ब्लूबेरी की खेती। इस जानकारीपूर्ण बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर शकुन राणा और उनसे अधिक जानकारी हासिल कर रहे थे हेमराज शर्मा। शिव रंजन जी, क्यों ना अब हम अपने किसान बागवान साथियों को सुनवा लें एक और लोकगीत।
3: बिल्कुल जी, तो किसान भाइयों आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये लोग।

0: किसान बागवान श्रोताओं, अभी आपने सुना समूह स्वर में ये लोकगीत। अब समय हो चला है कार्यक्रम को समेटने का, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कृषि जगत के कल के अंक के मुख्य आकर्षणों की।
1: किसान भाइयों, कल काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है सिंचाई की विभिन्न विधियां। करवाएंगे मनोरंजन लोकगीत से और सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी। विषय रहेगा टमाटर की फसलों के रोग।
0: जी किसान बागवान श्रोताओं, कृषि जगत के आज का सफर बस यहीं तक। अगले अंक में नए विषय पर ढेर सारी जानकारी और मनोरंजन के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग, 80% रहा मतदान। कुल्लू की लगघाटी में वोट डालकर लौट रही महिलाओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट, आज से मौसम बदलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस दौरान बंपर वोटिंग हुई और मतदान 80% रहा। प्रदेश में अब तक हुए पंचायती राज चुनावों में ये सर्वाधिक मतदान है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की कुल 1279 पंचायतों में वोट डाले गए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और आज रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरे चरण में कुल्लू जिला में सर्वाधिक 86%, सिरमौर जिले में 85%, सोलन जिला में 84%, ऊना जिला में 80%, कांगड़ा व किन्नौर जिला में 76%, लाहौल स्पीति में 69%, हमीरपुर में 75%, बिलासपुर में 79%, चंबा 78% और मंडी व शिमला जिला में 81% मतदाताओं ने अपने

अधिकार का प्रयोग किया। इस बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। शिमला जिले के रोहडू विकासखंड की ब्रासली पंचायत की 110 वर्षीय सुरतु देवी, बिलासपुर जिला की कसारू पंचायत की 108 वर्षीय रूपा देवी, दकड़ी पंचायत की 107 वर्षीय मनभरू देवी, रोहडू क्षेत्र की दियुदी मायला पंचायत की 107 वर्षीय बालादेई, बिलासपुर जिला की हरनोड़ा पंचायत के 106 वर्षीय संतराम, नूरपुर विकास खंड की पंछड़ा पंचायत के 105 वर्षीय बाबूराम, बिलासपुर की बलसीना पंचायत की 100 वर्षीय नारायण देई और शिमला जिला की कोहलू जुब्बड़ पंचायत की 98 वर्षीय चम्मी देवी स्वयं मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंची। आज मतदान करने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप ने भी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोट डाले। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 1187 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों का चयन होगा। इस दौरान इन पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद, पंचायत समितियों और चार नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के वोटों की गिनती 31 मई को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। कुल्लू जिला की लग घाटी की बड़ई बाग पीज सड़क पर आज एक टैक्सी वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 महिलाओं की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा और वाहन चालक शामिल हैं। ये लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद शिरड़ मेला देखने जा रहे थे। घायलों को कुल्लू के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। तीनों मृतक महिलाएं एक ही गाँव बेधर की रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज चुनावों में अपनी हार देख कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंचायत चुनावों से इसलिए दूरी बना ली क्योंकि उसे पहले ही अपनी हार का आभास हो गया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को झूठ के सहारे जनता के वोट हासिल करने की आदत पड़ गई है, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी मुख्यमंत्री ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर लोगों को लुभाने का प्रयास किया, लेकिन अब जनता कांग्रेस की चालाकी को समझ चुकी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिससे दूर दराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा एक बार फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की है। भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजी शिकायत में कहा

0: है कि मुख्यमंत्री ने 27 मई को शिमला जिला के नेरवा में स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण की घोषणा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव आज धर्मशाला में शुरू हुआ। इस मौके पर निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा शेरिंग ने कहा कि इस सांस्कृतिक उत्सव का उद्देश्य है भारत के लोगों को तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और उसके भू राजनीतिक महत्व से अवगत करवाना है।
1: हम लोगों ने सोचा कि तिब्बत के बारे में भारतीय लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत और तिब्बत का सीमा जो अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जाते हैं, क्योंकि तिब्बत बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोगों के मन में ये सोच है कि तिब्बत एक भूटान जैसा छोटा सा देश नहीं, तो ये सब समझ में आने से फिर तिब्बत और भारत का संबंध, भारत का एक विजडम हम लोग अभी तक उसको संभाल के रखा है, तो ये सब समझने के लिए अभी ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और हमारे सोच ये है कि अगर फंडिंग ज्यादा हो तो हम लोग और ज्यादा कर सकें, तो भारत के दूसरे सिटीज में कर सकें।
0: धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव को भारत और तिब्बत की संस्कृति के संगम का प्रतीक बताया।
2: भारतीय संस्कृति, तिब्बती संस्कृति है, ये दोनों का यहाँ पर एक संगम है। हम लोग यहाँ चाहे वो भारतीय हैं चाहे तिब्बती भाई बहन हैं, एक समाज की तरह साथ रहते हैं और कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, और इससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि बाहर से भी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको तिब्बती संस्कृति के प्रति जो है, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा उनको सीखने को भी मिलेगा, देखने को मिलेगा।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य में आज कुछ स्थानों पर सुबह से ही हल्के बादल छाए रहने से तापमान में कुछ कमी आई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भी कुछ स्थानों पर अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। ईद अल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में जाकर ईद की नमाज अता की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान लोगों ने अमन, शांति और खुशहाली की दुआ भी मांगी। राजधानी शिमला में ईद की मुख्य नमाज ईदगाह मैदान में अता की गई। चंबा में भी ऐतिहासिक चौगान नंबर 5 में ईद की नमाज अता की गई। इस मौके पर जहां छोटे छोटे बच्चे नई पोशाकों में उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ नमाज में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग, 80% रहा मतदान। कुल्लू की लगघाटी में वोट डालकर लौट रही महिलाओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट, आज से मौसम बदलने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है देशगान।

0: देशगान अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। आठ बज चुके हैं और आज की इस सुरीली शाम में रीमा ठाकुर का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम लेकर आए हैं भूले बिसरे गीत, जहां हर धुन में छुपी है यादों की खुशबू, हर गीत में बसा है बीते जमाने का प्यार। आइए सुनते हैं महबूब फिल्म, मेरे महबूब फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत रचना नौशाद की।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुमराह फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। रवि की संगीत रचना और बोल लिखे हैं साहिर ने।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला के साथ। पुराने गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, ये वो एहसास है जो हमें फिर से उन सुनहरे दिनों में ले जाते हैं जब रिश्तों में अपनापन था और गीतों में सच्ची मोहब्बत। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आइए सुनते हैं वचन फिल्म का गीत। रवि की संगीत रचना और बोल लिखे हैं प्रेम धवन ने।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: मुनीम जी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़, एसटी बर्मन की संगीत रचना और साहिर लुधियानवी की शब्द रचना।

0: अपनी खबर एक नजर बस एक नजर।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: हम है राही प्यार के, इस फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं तलत महमूद की आवाज़ में, खयाम की संगीत रचना और बोल लिखे हैं निसार अख्तर ने।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: वो दौर भी क्या दौर था जब गीत दिलों में उतर जाते थे। कुछ धुनें मुस्कुराना सिखाती थी तो कुछ चुपके से रुला जाते थे।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ हैं आप, 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कि परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: सिर्फ एक सफा पलट कर उसने बीती बातों की दुहाई दी है कि फिर वहीं लौट के जाना होगा। यार ने ये कैसी रिहाई दी है।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: कहते हैं कि हर वक्त हर जगह अगर खुद को साबित करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे, इसलिए जो जैसा समझता है वही बेहतर है।

0: फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या और न्यूज एट 9 के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके

0: सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश

भेजती है। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का

0: अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
1: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला. दीज टाइमलेस लाइन्स कैप्चर द सोल ऑफ पोइट्री बाय बशीर बद्र. सिंपल येट डीपली मूविंग, इंटीमेट येट यूनिवर्सल. हिज गजल्स स्पोक ऑफ लव, लोनलीनेस, रिलेशनशिप्स, सेपरेशन एंड द क्वाइट इमोशंस हिडन विद इन एवरी डे लाइफ. Bashir Badr gave Urdu poetry a fresh identity by writing in a language that felt close to ordinary people. His couplets continue to echo in mushairas and conversations. In 1999, Bashir Badr received the Padma Shri and Sahitya Academy Award for his poetry collection, Aas.
1: Musafir hain hum bhi, musafir ho.

0: The Indian mixed doubles pairs of Dhruv Kapila and Tanisha Krastatu progressed into the quarterfinals. However, HS Pranoy went down to home favourite Lo Kuan Yew in three games. In women's T20 cricket, the Indian team will face England in the opening game of the three-match series in Chelmsford tonight. The match is scheduled to start at 11 p.m. IST. INS Sudarshini arrived at Antigua yesterday after successfully completing a historic transatlantic passage as part of the ongoing Lokayan 26 expedition. The ship was warmly received by the Consul General of India to Antigua and Barbuda, Vijay Tiwani, and Chief of Defence Staff of Antigua and Barbuda Defence Force. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to identify and deport illegal immigrants from the country. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah resigns, says will continue in active politics in the state. Centre releases over 10,000 crore rupees to 12 states under Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. Renowned Urdu poet Bashir Badr passes away at 91 in Bhopal. IMD forecasts heatwave conditions to abate over many parts of northwest India from today. National capital region experience rain and thunderstorm this evening. And two Indian wrestlers advance to the semi-finals of the Asian Under-17 Wrestling Championships in Vietnam. And that's all in the news at 9. Good night.
1: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला 9:15 हुए हैं कार्यक्रम सुनेंगे एक फिल्म से रिश्तों की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और भी गहरे हो जाते हैं माँ बाप का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जिसने हर बेटे बेटी को आईना दिखाया और हर माँ बाप की खामोश तकलीफ को आवाज़ दी बात कर रहे हैं साल 2003 की सुपरहिट फिल्म बागबान की वैसे तो इस फिल्म की कल्पना निर्माता और सहलेखक बीआर चोपड़ा ने 1960 के दशक में यूरोप की अपनी यात्रा के दौरान की थी जब उन्होंने एक वृद्धाश्रम का दौरा किया और वहां के गृहस्थों की कहानी सुन के वो प्रेरित हुए थे लेकिन अन्य परियोजनाओं के चलते व्यस्त रहने के कारण दशकों तक इसका निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ था और जब उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया तो जुलाई 2002 में फिल्म सिटी में मुख्य फिल्मांकन शुरू हुआ बागवान का संगीत आदेश श्रीवास्तव ने तैयार किया था और गीत समीर ने लिखे थे रवि चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने राज और पूजा मल्होत्रा के किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई थी फिल्म ने हमें ये भी सिखाया कि जिस पेड़ की छांव में बच्चे बड़े होते हैं उसी पेड़ को बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत होती है और हर किसी की ये कोशिश रहनी चाहिए कि वो अपने माता पिता का सहारा ज़रूर बने
2: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र राज्य और देश की दशा व दिशा
3: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें
2: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है
3: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद। जय

0: हिमाचल
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: बागवान फिल्म की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो राज और पूजा के चार बेटे हैं जो अलग अलग शहरों में अपनी आजीविका कमा रहे हैं और माँ बाप से दूर रहते हैं। राज और पूजा का एक दत्तक पुत्र भी है जिसे राज ने पढ़ाया लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया। राज एक ईमानदार बैंक कर्मचारी है जो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में लगा देता है। उनकी पत्नी पूजा हर मुश्किल में उनका साथ निभाती है, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद जब माता पिता को बच्चों के प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है तो वही बच्चे उन्हें अलग अलग बाँट देते हैं। पति पत्नी जो पूरी जिंदगी साथ रहे उन्हें मजबूरी में अलग रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपने बच्चों का प्यार नसीब नहीं होता। परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलती है कि राज और पूजा वापस अपने घर लौट आते हैं एक नई ऊर्जा और एक दूसरे के लिए और अधिक प्यार और विश्वास के साथ। राज द्वारा लिखी गई पुस्तक बागवान इतनी फेमस हो जाती है कि राज को दुनिया ढेर सारा प्यार देती है। इस कहानी में उनका सहारा बनता है तो उनका दत्तक पुत्र आलोक, जो उन्हें भगवान की जगह रखकर उनकी पूजा किया करता है। फिल्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव, दिल को पसीजने वाली भावनाएं, संवाद ऐसे हैं कि हर आंख नम हो जाती है। ये फिल्म हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि रिश्तों की अहमियत भी सिखाती है। हर बच्चे के अंदर अपने माँ बाप के प्रति अगर समर्पित भावना है तो वो घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। लेकिन आज की सच्चाई कुछ और ही है, इसलिए आप सभी से गुजारिश रहेगी कि अगर आपके पास माँ बाप हैं तो उनकी कदर कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआओं में असर बहुत होता है, टूटे हुए रिश्तों का सफ़र बहुत होता है। जो झुक कर संभाल ले बुज़ुर्गों का हाथ, उन लोगों के घर में खुदा का घर होता है।

9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुन। कि ढलती शाम सी उम्र और तन्हा तन्हा से हम, ढलती शाम सी उम्र और तन्हा तन्हा से हम, उम्मीदों का काफिला और वक्त थोड़ा कम। कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

कि ज़िंदगी की खूबसूरती उसी में है जहां हम कमियों में भी खुशी ढूंढ लें, कि ज़िंदगी की खूबसूरती उसी में है जहां हम कमियों में भी खुशी ढूंढ लें, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ किसी को नहीं मिलता।

कि अपनी जिंदगी के कलाकार खुद बनिए और वही रंग भरिए जो दिल को सुकून दे। तुम बिन फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, निखिल विनय की संगीत रचना और फैज अनवर की शब्द रचना।

किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आंखें थी जो कह गई सब कुछ, आंखें थी जो कह गई सब कुछ, लफ्ज़ होते तो मुकर गए होते। मिथुन की संगीत रचना, रूप कुमार राठौर की आवाज़ और फिल्म है अनवर।

कि जिंदगी कभी पेड़ों सी लगती है। कुछ लोग छांव बनकर ठहर जाते हैं, कुछ पत्तों की तरह मौसम बदलते ही गिर जाते हैं, और कुछ जड़ों की तरह होते हैं, दिखते नहीं लेकिन तुम्हें गिरने भी नहीं देते हैं। कुछ रिश्ते ज़मीन में लिखे होते हैं, आँखों से नहीं एहसासों से दिखते हैं।

अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, ज़िंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। आइए सुनते हैं गजलें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मकसद भी सिखा कर जाएंगे। गजलों में आइए सुनते हैं पंकज उधास को।
1: नासिर काज़मी की एक गजल याद आ रही है, लेकिन इससे पहले एक खता पेश है।

गज़ल यानी जज्बातों की वो नर्म बारिश जिसमें इश्क भी है, तन्हाई भी, यादें भी है और ज़िंदगी की सच्चाई भी। आइए सुनते हैं हरिहरन को।

खामोशी में बड़ी राहत है, खामोशी में बड़ी राहत है। लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को अक्सर थका देता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गज़ल।

तुम्हारे गम की डली उठाकर ज़बां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

सादगी आत्मा की सबसे सुंदर सजावट है। सादगी आत्मा की सबसे सुंदर सजावट है। जितना सरल बनोगे उतना ही प्रकाश फैलेगा। चंदनदास की आवाज़ में आइए सुनते हैं ये गज़ल।

कितना सुंदर लिखा है किसी ने, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है तुझसे ये जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। आइए

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार नगमे। मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि समय बदल जाता है लेकिन इन गीतों का जादू कभी कम नहीं होता है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को मेरे हुजूर फिल्म में, शंकर जयकिशन की संगीत रचना और बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

0: रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर।
1: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नीलकमल फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। संगीत से सजाया है रवि ने और बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

पुराने गीत तो उस दौर की याद दिला देते हैं जब संगीत में सादगी और भावनाओं की मिठास हुआ करती थी। तो आइए सुनते हैं जीवन मृत्यु फिल्म का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला के साथ। आइए सुनते हैं एक नज़र फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: उम्मीद करते हैं पुराने गीतों का ये सुरीला सफ़र आपको पसंद आया होगा। इन्हीं मधुर यादों के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप कहीं मत जाइए, बस बने रहिए FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी और अंग्रेज़ी समाचार के लिए, कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण

से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of ntacuet.nta.nic.in. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही है और हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:10। इसके साथ ही हमारी सायंकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।